एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, आज रविवार है, तदनुसार 12 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यू और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है परिवार।

परिवार के रूप में समाज का हिस्सा है। प्रायः मनुष्य एकाकी नहीं रह पाता और इसीलिए उसे परिवार की आवश्यकता है। परिवार के केंद्र में माता पिता होते हैं जिनसे परिवार एकजुट रह पाता है। परिवार में माता पिता, दादा दादी, पुत्र पुत्रियां, चाचा बाबा और अन्य रिश्ते समाहित रहते हैं। यदि हम थोड़ा पीछे की ओर जाएं तो पाएंगे कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवारों की एक लंबी परंपरा रही है जिसमें आपसी रक्त संबंधों के बहुत से सदस्य एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहते हुए हमने पारिवारिक संस्कारों को सहज रूप से ही सीख लिया था। संयुक्त परिवार में रहते हुए मनुष्य को सुरक्षा का भी भरोसा था, साथ ही सामूहिक भोजन और घर खेत खलिहान के कार्य भी सामूहिक रूप से सहजता पूर्वक संपन्न हो जाते थे। इस प्रकार संयुक्त परिवारों में हरेक सदस्य को अपने कर्तव्यों का पर्याप्त ध्यान रहता था और मुखिया के तौर पर वयोवृद्ध व्यक्ति की आज्ञा का पालन सभी करते थे। आज आर्थिक उलझनों के कारण संयुक्त परिवार बिखर गए और एकल परिवार हो गए जिसमें हम दो, हमारे दो, बस। इसी विचार के इर्द गिर्द बुने गए परिवार कर्ज और आभासी दिखावे में जी रहे हैं और उनकी सभी खुशियां तीज त्योहार के उल्लास फीके पड़ गए हैं। अब इससे भी आगे न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ पति पत्नी ही होते हैं का चलन देखने में आ रहा है, जो केवल स्वयं के लिए भौतिक खुशी में जी रहे हैं। इस प्रकार के परिवारों से समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा। पहले और आज भी ये धारणा है कि परिवार बच्चों की पहली पाठशाला है और माँ हमारी पहली अध्यापिका। लेकिन जब परिवार ही सिकुड़ रहे हैं तो संस्कार कहाँ से आएंगे? माता पिता दोनों ही आर्थिक भंवर में ऐसे उलझे हैं कि बच्चों का बचपन महंगे स्कूलों में और टीवी मोबाइल में सिमट चुका है। सौभाग्य से अभी भी कुछ परिवार ऐसे बचे हैं जो अपनी सभी व्यस्तताओं के बाद भी इकट्ठे रहते हैं। उनके सभी त्योहार, व्रत, उपवास आदि कुटुंब में ही मनाए जाते हैं और बच्चे दादा दादी, काका या अन्य बड़ों की गोद में खेलकर शैतानियां करते हैं और इस प्रकार सहजता से ही उनमें पारिवारिक संस्कार विकसित हो रहे हैं। एक सुखी परिवार का होना हम सबके लिए और समाज के लिए परम आवश्यक है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

समूह स्वर में इस दिशा गान के साथ ही वंदना का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित श्री रामचरितमानस गान की 117वीं कड़ी। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार है सतीश भाटिया।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगी। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और

ध्वज पताकाओं से सजाया, घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय प्रातः के 6:40 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय।

अब से कुछ देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती निबात। छह बजकर पचास मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत मिश्रित स्वर में।

7:20 पर समय रहेगा कार्यक्रम वातायन का। आपके पसंदीदा कार्यक्रम खुश दिल से का समय रहेगा प्रातः 8:15 पर।

प्रातः 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। वहीं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रातः 9 बजे जयपुर केंद्र से। प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर।

सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10 बजे। सायंकालीन सभा में समाचारों का प्रसारण समय कुछ यूं रहेगा। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से, समाचार संध्या 8:45 पर दिल्ली केंद्र से, वहीं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती निबात।
1: सब भाइयों ने सोरा डियो बलजी भाई ने राम राम। हवार हवार में समय है कि विश्वास ये है कि किवा भी प्रकार की मेहनत करीने आपने जे पैदावार है इन्हें आपने हरते वधारा। किसान भाइयों देखो, बुआई करीने किसान भाई जे हैं ये हमेशा आशावादी रहे, तो एना बल्ले किसान भाइयों ने एक विशेष करीने बात याद रखनी पड़ेगा कि उत्पादकता वृद्धि ना मूल मंत्र हो है। इना मूल मंत्र ऊपर काम करीने किसान भाई ने अपनी
2: खेती ने बात हमारा वारा हंग्रे किसान भाई ने बोने ने वीना बेनो राम राम राम राम। हवा ना टेम में है ये आपड़े कयू काम करवो है, कयू नती करवो, कणा खेतर में आपड़े गौ लणवानो है कि सणा लणवानो है कि हूँ काम है ये हवा ना टेम में भाई। पण सबसे की पहले किसान भाई आपड़े हाजनी वक्त पूरी वेवरा बन जानकारी है ई राखी लेवी जुए, किम के भाई लणवानो काम भाई करी रहता कहे तो हाजनी वक्त पूरी वेवरा बन जान लाखी ला कि कणा खेतर में आपड़े कणा खेतर में सणा लणवा है, कया खेतर में दाड़िए करवा है।

ना, तो नंबर तो चाहिए, अंक तो चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंकहीन जीवन शून्य होता है, गणित में भी शून्य की जिससे गुना किया जाए, फलसफा फल फलाफल शून्य ही होता है, शून्यता की पूर्ति संख्या ही करती है और बस जोड़ घटाव करते रहते हैं और त्वरित फल के लालच में उड़ान ना करें, गुणा मत करें। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता कहते हैं कि वह कल्पना ही नहीं कर सकते अंक के बिना। अंक है तो नदी की लंबाई, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सागर की विशालता, फूलों की रचना, पत्तों की सजावट, हाथ की उंगलियों की, सभी तरफ अंक बैठे हैं बिना अंक के। सही बात है, दुनिया तितर बितर हो जाएगी। हमारे श्रोता कहते हैं कि हार जीत का निर्णय भी नहीं कर सकते। सही बात है। भगवान शिव ने तो द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारित किया है। वह कहते हैं कि चंद्रमा की गति विधि भी अंक पर आधारित है। जी बिल्कुल, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जीवन में अंक नहीं तो जीवन शून्य हो जाएगा और ज्योतिष विधा अपना अस्तित्व खो देगी। आप भी सही हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंक नहीं होंगे तो बिना अंकों के, रंगों के बिना, जैसे चित्रकारी संगीत के बिना किसी एक धुन की तरह होगा। अंक केवल गणित का हिस्सा नहीं है, वह हमारे जीवन, अस्तित्व, समय, भावनाओं सबके हिस्सा है। घड़ी की सुइयां, कैलेंडर, तारीखें सब अर्थहीन हो जाएंगी। हम सभी अपनी आयु का हिसाब नहीं रख पाएंगे, ना किसी खास पल का जश्न मना पाएंगे। बिना अंकों के पते, बैंक खाते, पहचान पत्र सब गायब हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्था बिखर जाएगी। प्यार, दूरी, भावनाओं को माप नहीं पाएंगे। अंक एक दूसरे को जोड़ते हैं, लय देते हैं। बिना उनके बिना दुनिया केवल एक अराजक और दिशाहीन कोहरा बनकर रह जाएगी। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता ने बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने लिखा है, अंक ना होते तो हमें मैथ्स से छुट्टी मिल जाती, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, गणित से छुट्टी पाने के लिए अंकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। पर फिर भी वह बहुत अच्छा लिख रही है। वैसे तो अंकों का आइडिया मानव मन में प्राचीन काल से ही होगा, बस उसकी प्रणाली आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने बनाया है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता, उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। कितनी अच्छी बात है। और प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, कहती है बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन पोस्ट बड़ा हो जाएगा। जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज का सुरीला सफर अंकों से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो अंक गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसकी शुरुआत प्राचीन काल मेसोपोटामिया, सुमेरियन मिश्र और भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले व्यापार और निर्माण की जरूरत करने के लिए पूरी की गई थी। इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय नियमों को लिपिबद्ध किया। चलिए, आपने बहुत सही बात कही है। और उसके साथ अंक नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब जो जुड़ रहे हैं जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा। दशमलव शून्य हमने दिया है तो चांद पर नहीं जा पाएंगे, ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही है कि अंक नहीं होंगे तो एक बड़ी सी इबारत भी लिखी है, लेकिन उस इबारत में से हम वही छोटी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि संतुलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्मांड नहीं चलेगा। अंकहीन होगा तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अक्षर हमें बोलना सिखाते हैं, अंक हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और अंक ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई और इन सभी बातों के बाद में हम आप तक गीत पहुंचाना चाहते हैं, जो अगला गीत है। एक बात मन में आती है कि किसी श्रोता ने लिखा कि अंकों की गिनती 3000 वर्षों पहले हुई, पर उसके पहले भी भारत में सभ्यता थी, वो सभ्यता बिना अंकों के कैसे होती, जरा विचार कीजिएगा। सभ्यता बहुत पुरानी है, जब विश्व कुछ नहीं जानता था तब भारत में महाभारत हो रही थी, और उसके पहले भी हमारी सभ्यताएं हुई हैं, तो अंक जाने कब से हैं और जाने कब तक रहेंगे। और हमने कहा था, हमारे एक श्रोता ने पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उनका उत्तर ऐसा है कि आज के कार्यक्रम में बातें अंकों में होंगी, मुझे लगता है अधिकांश गाने भी अंकों में ही बजेंगे। जीवन से यदि अंक निकाल दिए जाए तो उम्र का आकलन नहीं होगा, न समय की गणना होगी, न रुपए पैसों की गिनती होगी, न दूरियों का अंदाजा लगा पाएंगे। बिना अंकों की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाएगी। आज मोबाइल, कंप्यूटर, एटीएम, सारी मशीनें अंकों पर आधारित हैं। आज का जो विकास है उस पर सर्वाधिक योगदान अंकों का है। फिल्मी गीतों में भी अंकों के पर आधारित बहुत गीत बने हैं, और उन्होंने कुछ गीतों का नाम लिखा है। ये गीत आपके और आपके देश के नाम बस बता दीजिए, इस गीत में अभिनेता कौन है, अभिनेता का नाम बताइए और सुनिए ये गीत और विचार कीजिए अंकों के ऊपर। अगला प्रश्न आपके लिए यह देकर जा रही हूं कि आपके जीवन में कौन सा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एक अंक होता है, उसे कहीं भी लिखा हुआ देखकर, या घड़ी में देखकर, या चलते फिरते किसी गाड़ी में देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये मेरा अंक है, ये मेरे पिता का जन्मदिन भी हो सकता है, ये मेरी बहन का कोई दिन हो सकता है, ये मेरा अपना कोई दिन हो सकता है, मेरे अपने का कोई दिन हो सकता है। जरा विचार कीजिए, वो कौन सा अंक है जो आपके जीवन में बड़ा प्यारा है, आपको बड़ा प्यारा है, बताइए वो अंक, साझा कीजिए हमारे साथ और बताइए इस गीत के

दशमलव भारत तो यू चांद जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही।

हम सुन रहे थे ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा गीत। और हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही उत्तर दिया, मनोज कुमार जी। उन्हें हम प्रेम से भारत भी कहने लगे थे शायद, है ना। और हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा नंबर या अंक कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता जो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग अपने अपने अंक बताए हैं। मैं सभी के अंक पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, परंतु आपका जो अंक है जो आपको बहुत बार दिख रहा है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिख रहा है कि शायद उससे आपको कई बार प्यार मिल रहा हो, है ना। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी को दो अंक अच्छा लगता है, दो के बिना संसार अधूरा है, सही बात है। दस अंक किसी को अच्छा लगता है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर चलता है, जीरो एंड वन। और सोचिए कि कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या को या आपके नाम को या किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी इमारत को भी और बड़ी से बड़ी इमारत को भी, सब कुछ को वन एंड जीरो में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर किया जाता है। ये बड़ी कहानी है, पर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है उनको, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं। इस बात का जिक्र इन्होंने यहां पर किया है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सात नंबर अच्छा लगता है क्योंकि सात का अद्भुत महत्व है, सात दिन है, सात स्वर है, इंद्रधनुष के सात रंग है, सात महाद्वीप है, सात समुद्र है, सप्तर्षि सात है और विवाह के फेरे भी साथ होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे शुदा लिखते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, समय के साथ उसका पतन भी हुआ। अगर पतन नहीं होता तो शून्य से ही प्रारंभ करना नहीं पड़ता जी। पतन तो नहीं हुआ हाँ, लेकिन बदलाव जरूर हुए, उस बात को हम मानते हैं। और अब हमारे श्रोता ने उत्तर, कई सारे उत्तर दिए हैं। किसी ने कहा कि नौ उन्हें पसंद है क्योंकि वो पूर्णता का नंबर है, कोई कहता है कि उन्हें सात नंबर पसंद है, किसी को आठ पसंद है, किसी को तीन पसंद है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये वो कहती है, लेकिन वो कहती है कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई शिव जी के बारे में कि उनके साथ होता है। कोई कहता है कि शून्य उन्हें बड़ा पसंद है क्योंकि किसी भी अंक के आगे कितने भी शून्य लगा दो वो उसको बड़ा करता ही जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई पंगा लेने के लिए आता है तो शून्य से गुणा कर दो, वो शून्य हो जाता है। और किसी को छह पसंद है, किसी को कोई अंक पांच पच्चीस तीस उनतीस कई सारे अंक पसंद है, किसी को बारह इक्कीस पसंद है, किसी को एक अंक पसंद है, सबको अलग अलग पसंद। कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देते। कोई कहता है कि तेरह अंक लोग गलत मानते हैं और तेरह बहुत अच्छा अंक होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में तेरह अंक को गलत माना ही नहीं गया। शायद किसी को अठारह नंबर पसंद है और किसी को कोई और अंक पसंद है, सबके अलग अलग अंक पसंद है। और मैं सभी के अंकों का स्वागत करती हूं क्योंकि हर अंक अति विशिष्ट है। अब मैं चल रही हूं अगले प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, दस लाख बराबर एक मिलियन होता है और 100 करोड़ बराबर एक बिलियन, ये तो हो गई अंग्रेजी संख्याएं। भारत की संख्याओं में आपको कहां तक की संख्या पता है? भारत की संख्याओं में करोड़ के बाद 100 करोड़ नहीं होता, कुछ और होता है, है ना। 10 लाख तो 10 लाख ही रहते हैं, वो मिलियन नहीं होते क्योंकि इसके बाद 11 लाख हो जाते हैं, है ना। तो आप बताइए, आपको भारत की सभ्यता की संख्याओं में कहां तक की संख्याएं पता है? जल्दी से हमारे साथ साझा कीजिए। और ये भी बता दीजिए कि अगले गीत की ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, यानी गायक जो है वो कौन से हैं, बताइएगा।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया। आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोनी कुमी इसके संगीतकार, तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज्यादा हो सकती हैं, कहां तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आंख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब मील दस मील पद्म दस पद्म शंख महाशंख और इसके बाद ये रुक जाते हैं, तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं। और सागरोपम आयु की बात भी आती है, सागर छह सागर दस सागर पंद्रह सागर तैतीस सागर, ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे तो खरब तक पता है, एक खरब सौ अरब, उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है, खत्म ही नहीं होती, ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं अक्षौणी भी एक संख्या है, महाभारत के युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे, और भी है जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अरब खरब नील पद्म शंख और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चुटैया जी ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं आज संडे की छुट्टी है, बेटी भी घर पर है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है, बैंक ऑफिसर है, तो वो लिख रही है रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है और हंसते हुए कह रही है कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे तो मेरी जॉब का क्या होगा ये भी बड़ी चिंता है, चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पता, करोड़ तक तो पता है, उसके बाद खरब का भी पता है, शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं, एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना कि आज जब हम ये सुन रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को जरा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहां तक जाते हैं और कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे घरों में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था, फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान, कई सारी चीजों की बात आती थी तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे, क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो, अंकों से ही बना हो, ग्रंथ हो किताब हो कोई भी चीज हो, आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के, वर्ग पहली भी एक आती है समाचार पत्र में उसमें भी अंकों की आते हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई ग्रंथ ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है ये पहली है, इस पहली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन है।

कच्चे चाचा चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा।

हम सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म से यह गीत आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज बहुत पसंद है, पूरी वादियां गूंजती हैं इस आवाज में, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है और एक ग्रंथ है आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है, बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना इसमें खगोल शास्त्र गणित काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड की माप का विस्तृत वर्णन भी है। इसके साथ न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों पर ही आधारित होती है जी, हम इसे मान सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से जिक्र किया है लीलावती ग्रंथ का, फिर से बात आई और इन्हीं सभी ग्रंथों की बात फिर से आई है और इस बात के लिए बहुत अलग अलग परंपराओं की बातें कही हैं और उन ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि सुंदरी विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। दश कुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूं, मगर आज बच्चों को 1, 2, 3 तो आते हैं पर हिंदी के अंक 1, 2, 3, 4 न पढ़ने में आते हैं न लिखने में आते हैं। बहुत विचारणीय बात आपने कही है।

और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इस बारे में बहुत सारे बातों को बताया है और एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले ये जानकारी मुझे भी कहीं से मिली थी, क्योंकि एक श्री भूवलय ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनने में पढ़ने में आई है कि ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं, जैसे तात्विक विचार हैं, वैद्यक, अणुविज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवत गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं। और पहला कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था और इसमें 6,00,000 पद हैं और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी। तो ये सारी जानकारियां आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूं, हम सब इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हैं, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हैं। इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले जमाने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कोड़ी का दंड करते थे। तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कोड़ी का भी नहीं है। जी, 5 सिद्धांत का गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है। जी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है। अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। तो अंकों से दोस्ती कीजिए और सुनते हैं हम अगला गाना, 5 रुपया 12 आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत।

दिल रुबा क्या कहा, दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना, तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो

है दिल रुबा सच कहा साच तेरा प्यार बाकी माया है तेरे लिए जोगी बन सकता हूँ जंगल जंगल फिर सकता हूँ चाहे नमूना देख लो तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देववर्मन का संगीत, और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़ी मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना पांच पैसे का एक सिक्का और एक पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, छह पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी हो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय है श्रीमद भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वो संभा कितने आदमी थे सरदार दो, देखा गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूं क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं तो एक दर्द देना तो बनता है। वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का।

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है, वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अगला गीत है, इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

मैं कर रही थी किसी का इंतजार, वो जिससे मैं करती हूँ

हम सुन रहे थे तेजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन है। गीतकार हैं जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने दो, दस तोला, बोसाखी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक में नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारे श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर में बस इतना ही। गणित के साथ पले बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन

0: नजर का उपजा असर है तुम्हारी कसम कर मगाए से हम हैं नहीं जिस पर काबू यह है कैसा जादू मेरे लिए तो सच भी भरम है
1: सुनिए
2: कहिए
1: सुनिए
0: सुनिए

0: क्या हो जाएगा।
1: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हो या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथ ही किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है, उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है। उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की।

0: 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुस जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं। इसी को

0: प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
2: ईपीएफओ की यह मिनिस्ट्री योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
3: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एएमटीएस और बीआरटीएस के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद बीआरटीएस देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और 0% प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने

0: आज बताया कि फूकोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
1: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की रेबिएला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा देवदास फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रांची पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

दर्शन मुरन के धुन सुन आई दा दे जमुना के तट पर नीरत करत उठ नीरत करत उठ हीरत भीरत उठ हीरत भीरत ऐसी चंद तपन दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्नादि दिग्न

या लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट लगन बेच दे सजन नदादा चित झट झट झट झट झट झट सजन का सजन का चित झट झट सजन का चित सजन नदा साधा झट सजन का साधा सजन का।

0: सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
4: कभी बेख्याल हो चूलिया,
3: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

चूहा तो नहीं हो गया कहीं मारे डर के, चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने।

0: गाना बुरी बात है,
1: चोरी चोरी बिल का लगाना बुरी बात है, चोरी चोरी बिल का लगाना बुरी बात है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, जो है नया दौर फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: 文宣艺术
1: 文宣艺术
0: मन चाहेगी
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ नियम मन चाहे गीत कार्यक्रम के।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड न भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें।
2: और ये चिट्ठियाँ आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने और टोनी दीवान ने। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया, उसी पोस्टकार्ड, उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं, ढेर सारी आशीर्वाद प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे, ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं।

लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं, गुलाम रसूल राउमा, बिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरसाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चौपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

0: सहारा।
1: हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए। इसी भाव भूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओ जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया, वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो, ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल। एक पूरब को जाते हैं, दूसरा पश्चिम को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं। जरा कपड़े बदल लो, दिन भर की पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों? आप क्यों? ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलोसफी की क्लास मत शुरू कीजिए। वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर श्रृंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या।
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कराना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक।

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जा ना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
2: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। हा हा, मजा आ गया।
2: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
2: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
2: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओह, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
2: तुम मत उठो ना, बैठी रहो।

0: कुछ देर और बातें करते हैं।
1: यहाँ डाइनिंग टेबल पर मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
0: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
1: 10 दिन हुए आपको नैनीताल आए हुए और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे आखिर बात क्या है?
0: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
1: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
0: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना, आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ है?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहाँ से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ, लाओ लाओ लाओ भाई, इस गुनगुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविता बाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसोफर तो है नहीं हम, बस सीधे साधे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो, मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है, पर मैं पूछती हूँ क्यों, आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी, जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनी

0: की सैर नहीं करवाओगे?
1: जी
0: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
1: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
0: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
1: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज़ है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ, मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो, ये क्या बात हुई? मैं तो हूँ ही पहाड़न, पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो, ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़
0: और नहीं तो क्या। जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही, पागल हूँ मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम, तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिक में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें ने कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूँ मैं क्या करूँ, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: तो डल इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़का कर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी।

0: तुम जैसा कोई साथ हो तो।
1: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
0: घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
1: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
0: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि ये अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
1: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
0: कुछ और बात करूं मीनाक्षी।
1: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
1: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
0: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
1: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप, मेरे किए क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
0: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
1: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
0: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
1: सगा? सगा मानते हैं, किस रिश्ते से?
0: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
1: पता नहीं।
0: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
1: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
0: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
1: जमती थी? पता नहीं।
0: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
1: पूछिए।
0: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
1: जी
0: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
1: बर्फ का पहाड़ पंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
0: अगर बर्फ पिघल कर धरती में जज्ब हो जाए तो?
1: रोज रोज कहाँ होता है ऐसा, बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी। कई बरस हो गए उस बात को, अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी, और उस बार वो अकेले आई थी।

0: ये मीना तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे रहने दे, झूठी तारीफ करने से जुबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है?
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय, सच कहो मीनाक्षी, अगर तू ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी। तो
1: लगता है तुझे कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी?
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गए तेरी सरगम वाले वो कप के? पता नहीं कहाँ रख देती है।

0: ये रही। अब बोल
1: बोल ना यार, कौन सा राग गाओ?
0: अरे
1: बोल
0: ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से।
1: अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
0: मैं कह रही हूँ, मैं कह रहा हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
1: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ, गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
0: मैं कहती हूँ पल्लू फोटो मुझे दे दे।
1: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते तो अच्छी तरह से।
0: बस हो गया, अब दे दे।
1: हो गया ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान कब हुआ?
0: देख पल्लू तू
1: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
0: 3-4 महीने से।
1: अच्छा तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
0: लड़का है।
1: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
0: शेखर।
1: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
0: सीनियर है।
1: ये भी गाना गाता है क्या?
0: नहीं, सुनने का शौकीन है।
1: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में दिख रहा है?
0: देखकर बताना।
1: अरे यार यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
0: शाम को।
1: अच्छा।

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है। नहीं
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पाँव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यही रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियाँ बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़ी ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसी हुई, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारनी हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितने कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार, अपनी ये फिलॉसफी होनी तो, भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बात है, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसी जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करते हुए नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब न मुझे अच्छा लगता है और न ही शेखर को।
2: शेखर को?

0: हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ। मुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है।
0: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं हो सकता, अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं। टूट होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा।

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती उजाले।

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।

0: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था, क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
1: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
0: सजा।
1: किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूं, अगर मैं जो कहता हूं, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूं, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
0: बिल्कुल,
1: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम

0: उनकी वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे। तो ये जो बात है ना, जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरोभाव ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिले वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल बागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
0: विरोध करेगा,
1: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
0: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
1: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
0: गजब।
1: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
0: वो आराम से बेच सकते थे पैसे।
1: हाँ, बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा। दिया, उन्होंने वो वापस कर दिया।
0: गजब।
1: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त माड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे माड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत

0: आज भी मौजूद है?
1: आज भी मौजूद है और वहाँ पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बना है। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये हूँ, मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, वो बड़े होंगे उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे, उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
0: क्या बात है।
1: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही ट्रेडिशन है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
0: बिल्कुल रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत की लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
1: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रैजिक था। और उस समय उनकी उम्र क्या थी, ही वॉज 63 साल के थे वो, आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है, इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रांग, इतना क्या कहते हैं,
0: जुझारू
1: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूं, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
0: ये होना ही नहीं चाहिए।
1: हाँ,
0: कोई भी
1: और,
0: हो,
1: नहीं, और, नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज,

0: उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल।
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं।
0: Exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए और लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय।
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे।
0: और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो। कोई ना कोई वो याद निकालता ही है, और हर 1-2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वाज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें रुकना चाहिए।
1: गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: जी उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है। अच्छा। और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर

0: तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं।
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई गीत हम क्यों ना सुन ले।
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: और उसके बोल है मेरे दिल में है एक

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो

0: कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए।
1: नहीं वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी।
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है। लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारे स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो पलट के नहीं देखती थी
1: उस वक्त, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
0: आ तो गई, गीत सुन लेते हैं
1: जी।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जाए जिंदगानी कब

आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब

0: गया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सल करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, और

0: करने लगा तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसे आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, लेकिन छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी
1: जी।

0: ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या है आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूं कि ये आजादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूं कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूंगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज ए फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ न कुछ ऐसा याद आता है, कुछ न कुछ ऐसा मिलता है, आपके कोई मीम हो या कोई रील हो कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है, आपके होने से ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
0: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
1: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोकला इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशुमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था।

0: मैंने कहा हाँ करना था लेकिन अभी मुझे ये करना है. तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले. सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी. क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? मुझे वो एकदम ऑफेंड हो गया कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे. तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी. ओके
1: राइट.
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है. फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई. फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना. पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझमें भी है. तो मैं एनजीओ के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ.
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था. तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है. तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए.
0: थैंक यू सो मच. ऐसे होता है ना कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं. पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया. थैंक यू सो मच. मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस.
1: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी. कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले. अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे और प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको जानकारी दे रहे हमारी आज की सभा के शेष रहे और कल की पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहली आज की सभा के शेष रहे मुख्य कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। कार्यक्रम बच्चों के मुख से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, मजबूत बच्चे घर पर बनते हैं और छोटी उम्र में भी कुछ बड़ी सीखे विषय पर चर्चा। भेंट वार्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नलिन जैन द्वारा कविता आशा का उजाला। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7:00।

समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10:00।

रात 11 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए भी नजर मारी कल के प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातःकालीन रेडियो तरंगों का आगाज होगा प्रातः के 5:53 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रामचरित मानस गान आप सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर, प्रातः के 6:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम के तीन बाद का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 6:50 पर।

देखे 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ उद्देश्य का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 8:45 पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए। प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

जय हिंद बच्चों। बच्चों के मुख से कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को आपकी दीदी सीमा जैन का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज 12 जुलाई है और आजकल लगभग सभी दिन कोई न कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का चलन हो गया है। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि आज के दिन कौन से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? बच्चों, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस

0: राष्ट्रीय सादगी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज की बातचीत में हम कविता और कहानी सुनेंगे आज के आपके मेहमान साथी से। तो आइए सुनते हैं आज की बातचीत।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम नलिन जैन है।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ।
1: अरे वाह, कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा?
2: मैं नीलू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ।
1: अच्छा, आज आप अपने साथी बच्चों को क्या सुनाने वाले हैं नलिन?
2: मैं आज मेरे साथी दोस्तों को आशा का उजाला कविता सुनाने जा रहा हूँ।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है।

0: कविता सुनाने जा रहा हूँ।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है, सुनाइए।
0: अंधेरा हो चाहे कितना गहरा, एक छोटी सी किरण ढूंढ ही लेती है रास्ता। गिर जाए 100 बार हम, आशा फिर से उठाना सिखाती है। किसान देखता है बादल को, बोलता है बारिश आएगी। विद्यार्थी देखता है किताबों को, बोलता है मैं पास हो जाऊंगा। माँ देखती है बच्चे की आंखों को, बोलती है मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। इसका नाम ही तो है आशा। टूटी शाख पर बैठी चिड़िया भी सुबह होते ही गाना गाती है। सूखे पेड़ पर भी आती है कलिया, क्योंकि उसे भरोसा होता है बाहर का। जब सब कहते हैं नहीं होगा आशा का, मैं कहती है एक बार और कोशिश करो। जब रास्ता बंद हो जाए, आशा नई खिड़की खोल देती है। तो मेरे दोस्तों, कभी हिम्मत मत हारना। रात के बाद दिन आता है, सर्दी के बाद बसंत आता है। बस अपने दिल में आशा का दिया जलाए रखना, क्योंकि जब तक आशा है तब तक जीवन है। जब तक आशा है तब तक हर सपना सच हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।
1: अरे वाह नलिन, आपने अपने साथी बच्चों को बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, जिसमें आपने अपने साथी बच्चों को ये संदेश दिया कि हमें हमेशा आशा नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि आशा के माध्यम से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा नलिन, अब आप अपने साथी बच्चों को क्या सुनाने वाले हैं?
0: अब मैं मेरे साथी दोस्तों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
1: अच्छा, इस कहानी का क्या शीर्षक है नलिन?
0: इस कहानी का शीर्षक गधे ने पकड़ा चोर।
1: अरे वाह, सुनाइए।
0: एक बार एक अमीर शेख अपने दोस्त सलीम के साथ रेगिस्तान की यात्रा पर निकला। यह यात्रा अद्भुत थी, इसमें साहस और जोखिम था। शेख के मित्र ने बहुत से सिक्के अपने पास एक थैली में रखे हुए थे। एक सुबह सलीम सोकर उठा तो देखा कि उसकी सिक्कों की थैली गायब थी। सलीम ने घबरा कर ये बात शेख को बताई। शेख बुद्धिमान था, वह समझ गया कि इस रेगिस्तान में कोई बाहर का आदमी नहीं, कोई काफिले का आदमी ही काफिले तक पहुंच सकता है। जरूर चोर कोई अंदर का आदमी ही है। खूब सोचकर उसने एक योजना बनाई। शेख ने एक तेंबू खाली करवाया और उसमें एक गधे को बांध दिया। फिर उसने काफिले के सभी लोगों को चोरी के बारे में बताया और चेतावनी दी कि जो भी चोर है वो अपना अपराध स्वीकार कर ले, वरना उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शेख गरज कर बोला, अब मेरा गधा चोर को ढूंढने में मेरी सहायता करेगा। काफिले के सभी लोग को उस तंबू में जाकर गधे की पूछ सहलानी है। जो भी चोर होगा उसके द्वारा पूछ सहलाते ही गधा जोर से रेंकने लगेगा, चोर झटपट में आ जाएगा। काफिले के लोग एक एक कर तंबू में जाने लगे। सभी भीतर जाकर गधे की पूंछ पर हाथ फेर रहे थे, पर गधा एक बार भी नहीं चिल्लाया। सबने सोचा चोर शायद काफिले में नहीं है। शेख ने कहा, गधा शायद चोर को नहीं पहचान पाया, पर मैं जानता हूँ चोर तुम में से एक ही है। इसलिए अब मैं तुम्हें प्रत्येक को सुनूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। शेख अपने आसन पर बैठा, एक एक कर सभी लोग उसे अपना हाथ सुंघाने लगे। एक एक कर कई लोग आए और गए। तभी एक व्यक्ति के हाथ सुंघकर शेख चौंक गया और उसने जोर चिल्लाकर कहा, पकड़ा गया चोर, यही है एक चोर, इसे 100 कोड़े लगाए जाए। चोर डर कर शेख के पैरों में गिर गया। सभी हैरान थे कि गधे की पूंछ सहलाने या हाथ सुनने से चोर का पता कैसे चल गया। शेख के मित्र सलीम को भी यह बात अजीब लगी। सलीम ने शेख से पूछा, यह क्या रहस्य है, जरा बताओ तो सही। शेख ने बताया, मैंने गधे की पूंछ पर कपूर पीस कर लगा दिया था। सभी लोग तंबू में गधे की पूंछ सहलाकर आए तो उनके हाथों से कपूर की गंध आ रही थी, मगर चोर ने डर से गधे की पूंछ को छुआ तक नहीं।

0: इसलिए उसके हाथ से कपूर की गंध नहीं आ रही थी। बस मैं समझ गया यही है चोर। शेख की बुद्धिमानी पर सलीम खूब हंसा।
1: अरे वाह नलिन, आपने अपने दोस्तों को बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। क्या आप बता सकते हो कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
0: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।
1: बहुत अच्छे नलिन। बच्चों, आपके दोस्त ने आज आपको बहुत ही अच्छी कविता और कहानी सुनाई। नलिन, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: बच्चों, जैसा कि अभी हमने बात की, आज अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस है। तो बताओ बच्चों, आशा का क्या मतलब है? आशा का मतलब है आने वाले समय में किसी अच्छी बात होगी ऐसा सोचना। जैसे कुछ बच्चे ये आशा रखते हैं कि वे बड़े होकर अच्छे पद पर पहुंचेंगे, या फिर कुछ सोचते हैं कि उनके नंबर अच्छे आएंगे, या वो कहीं अच्छा काम करके नाम कमाएंगे। बच्चों, ये आशा, जिसे हम उम्मीद भी कहते हैं, हमें हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। कभी कभी कोई काम हमें बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम वो काम कर ही नहीं पाएंगे या उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन जब हम मन में विश्वास और धैर्य रखकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलने की उम्मीद होती है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस तरह लोगों में सकारात्मकता, शांति और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई। बच्चों, आशा हमें सीखना शुरू करने, नई दोस्ती को अपनाने और हार न मानने की प्रेरणा देती है। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि हमारे मन में शांति रहती है। बच्चों, इस दिन या यूं कहें कि जब भी हो सके, हम दूसरों की मदद करें जिससे उनके मन में आशा बनी रहे। और जैसा कि किसी कवि ने कहा है, इस बात को हमेशा याद रखें कि उम्मीदों ने भरा है मुझमें कुछ कर गुजरने का हौसला, राह कोई भी हो कर ही लूंगा एक दिन फतह। और इस चर्चा के बाद आइए बच्चों, सुनते हैं आशा से भरा एक बहुत ही प्यारा गीत।

बच्चों, घर हमारी सुरक्षा और सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। घर परिवार में अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए बच्चे जो बातें जानते, समझते और सीखते हैं, उन्हीं से उनके पूरे जीवन की नींव बनती है। परिवार में रहते हुए बच्चे शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम और मदद करने की भावना जैसे गुण सीखते और अपनाते हैं। घर से मिला प्रेम, सुरक्षा की भावना, सही गलत का निर्णय लेने की बुद्धि और स्वतंत्रता, बढ़ती उम्र के साथ होने वाले परिवर्तनों के समय घर वालों का साथ, किसी मुश्किल परिस्थिति में मिलने वाला मार्गदर्शन और उस परिस्थिति से बाहर निकलने में साहस और धैर्य रखने की समझ, साहसी और निडर बनने की प्रेरणा, ये सभी बातें घर में रहते हुए बच्चे धीरे धीरे सीखते हुए मजबूत बनते जाते हैं। एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व जो स्वयं मजबूत होने के साथ साथ दूसरों को भी मजबूत बनने में सहायता प्रदान करे। एक आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व घर में मिले सकारात्मक वातावरण से ही तैयार होता है। परिवार में रहकर बच्चे ये सीखते हैं कि हर व्यक्ति के विचार, जरूरतें, बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती हैं। उनके साथ उन्हें स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और सामंजस्य बैठाना, ये सभी बातें सीखकर बड़े होने पर वे समाज में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। बच्चों, दोस्त जरूर बनाएं और घर से बाहर भी जरूर निकलें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जितनी मजबूती आपको अपने माता पिता से मिलती है, वह किसी और से नहीं मिल सकती। माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे भी अधिक आगे बढ़ें, आपको वो सब कुछ मिले जो उन्हें नहीं मिल पाया। इसलिए जब वे आपसे कुछ कहें तो शांति से उनकी बात सुनें, और जब आप उनसे सहमत ना हो तो उन्हें शांति से समझाने का प्रयास करें। बच्चों, अपने अनुभव उनसे साझा करें और उनके अनुभवों से लाभ उठाएं। इस तरह बच्चों, घर में आप एक मजबूत व्यक्तित्व बन सकते हैं। चर्चा अभी और भी है बच्चों, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक गीत।

बच्चों हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, लेकिन बचपन से ही हम कुछ बड़ी सीखें सीख लें तो हमारा जीवन आसान, आनंददायक और सफल हो जाता है। जब तक बच्चा छोटा होता है घर पर ही रहता है, स्कूल जाना शुरू नहीं करता, तब तक वह अपने घर परिवार में ही बहुत

की बातें सीखता है। वह बड़ों को देखकर उनका अनुसरण करता है। जैसा वे बोलते चलते और व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा अपने आप ही सीख लेता है। इसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब वह स्कूल में अपने दोस्तों अध्यापकों से बहुत कुछ सीखता है। साथ ही अपने आस पड़ोस और जहाँ कहीं भी वह जाता है जिस माहौल में रहता है वहाँ से ही उसका व्यवहार और स्वभाव बनना निर्भर करता है। बच्चों अपने बड़ों को देखकर और अच्छे लोगों या महापुरुषों के जीवन की सफलता से प्रेरणा लेकर हम बहुत सी बातें सीखकर अपने जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की सीख कौन कौन सी हो सकती है बच्चों? जैसे कि सबसे पहले हम अपनी रोज की आदतों को अच्छा बनाएं, जैसे अपना एक टाइम टेबल बनाकर समय पर सोएं, समय पर उठें, स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमित रूप से ब्रश करें, स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, समय समय पर अपने हाथ और पैरों को धोते रहें, गंदगी ना फैलाएं, अपनी चीजों को व्यवस्थित रूप से सही जगह पर रखें, दूसरों से बात करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखें, ऊंची आवाज में ना बोलें और गुस्सा आने पर या अपनी बात मनवाने के लिए चीखें या चिल्लाएं नहीं। इसके अलावा जितना हो सके दूसरों की मदद करें, सच बोलें और कोई गलती हो जाने पर उसे स्वीकार करें। ऐसी बहुत सी बातें दिन भर में होती हैं बच्चों जिनसे आप सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों बातें तो हम आपसे बहुत सी करना चाहते हैं लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। तो अगले रविवार मिलेंगे नई बातों के साथ। इसी के साथ आज्ञा दीजिए आपकी दीदी सीमा जैन को। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

में नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। दोस्तों, आज अभिनेता प्राण की पुण्यतिथि है, तो उनको विविध भारती परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हुए कार्यक्रम में कुछ गाने उनकी ही फिल्मों से शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मन्ना डे की आवाज में, उनकी ही फिल्म से।

مصطفى الحمراء.

माना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है।

तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही यार के हंसते ही मैं

होता है पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हे हवा।

शीशी शीये किते करता ऐसा काए को होता, शीशी शीये किते करता ऐसा काए को होता। देख ले जिस दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। ए,

मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, अपने व्यवस्थाद यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बस लोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा कर।

साल महीने के लिए खाने पीने के लिए, अरे साल महीने के लिए खाने पीने के लिए कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए। लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

समझा ये है वादा, क्या इरादा, कोई काम नहीं है ज्यादा, लेके जाना आधा आधा हो बाबा, मिलती सुन लो ना।

से चार हो सकते हैं, चार से आठ हो सकते हैं, आठ से साठ हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोल

0: दृष्टि है, सरगम बताऊं। पम पध पग सपा दिल की उमंगे हैं जवान गाइए,
1: दिल की उमंगे हैं जवान
0: बहुत अच्छी,
1: रंग में डूबा है समा।
0: वाह वाह।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेता प्रांग की फिल्मों के गाने, तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया है।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
4: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
3: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।
2: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
3: बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते दो। बढ़िया, जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया। कहा, सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनसेवा में समर्पित अधिकारी और कर्मचारी सुशासन का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारने से ही सुशासन स्थापित होता है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है और प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेंस की धुरी और विकसित राजस्थान 2047 के महत्वपूर्ण सारथी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कर्मचारी हित में प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का भी पारंपरिक राजस्थानी लोक संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने से पिछले 12 साल से चला आ रहा इंतजार आज समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां से नियमित विमान सेवाओं का संचालन होना समूचे मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
7: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूं वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। और जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और

0: आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
1: गौरतलब है कि जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को लोकार्पण किया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नए न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक जिम्मेदारियों से ही न्याय की मूल भावना साकार होती है और राष्ट्र प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। यह नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
1: समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा तथा पंजाब न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन गंभीर चेतावनी का संकेत है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसका मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा में रखे गए वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधा लगाकर आमजन से भी हरित राजस्थान के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। पीआईबी ने पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से यह भी आश्वासन दिया कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। पीआईबी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 350 रूपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5 लाख रूपये का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी पत्र का भी खंडन किया है। ब्यूरो ने लोगों से ऐसे फर्जी संदेशों से सतर्क रहने, किसी भी प्रकार का पैसा स्थानांतरित नहीं करने और अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चलने वाली ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 27 जिलों में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी अजमेर

0: संवाददाता ने बताया कि आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं ली गयी।
1: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलिमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूबने से आज 3 सगे भाई बहनों सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार ये बच्चे जिले के धंगोला क्षेत्र के बड़ी गांव के रहने वाले थे और एनिकट में सुबह नहाने गए थे। इस दौरान अधिक गहराई में जाने से ये हादसा हुआ। घटना के दौरान 2 बच्चों को आसपास के लोगों ने समय रहते बचा लिया। हादसा स्थल के पास मंदिर होने के कारण बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पाली जिले में वस्त्रों के पैकिंग बैग की कई यूनिट इन दिनों स्थापित हुई है। इनमें अधिकतर ने कुटीर उद्योग के तौर पर पहचान बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में 20,000 से अधिक महिलाएं घरों पर ही पैकिंग बैग तैयार कर वस्त्र निर्माता इकाइयों को भेज रही है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: विभिन्न वस्त्रों के पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है, बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: सरहदी जिले श्रीगंगानगर में महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता देने और भेदभाव तथा उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आज सेमिनार आयोजित की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने इसमें शिरकत की। इस दौरान कई न्यायकर्मी मौजूद रहे। सेमिनार में न्यायिक कार्यों के दौरान और फैसलों में महिला सम्मान भाषा के उपयोग और कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों पर जानकारी दी गई। प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सरहदी और पश्चिमी जिलों में दिन के समय तापमान बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं फलौदी और जैसलमेर में भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। अधिकांश जिलों में बरसात की गतिविधियां थमने से किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। वहीं जैसलमेर में आज आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के ऊपर मानसूनी बादल फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन बरसात की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया। कहा, सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कोटा का 5वां दीक्षांत समारोह हाल ही में आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान PhD के 2 शोधार्थियों सहित 203 विद्यार्थियों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि यहां से निकलने वाले विद्यार्थी केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का

0: नेतृत्व करने वाली बनी। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित सघन पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर वन विभाग ने ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स गिराने की अभिनव पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। अपने कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले कॉटेज वार्ड का भूमि पूजन किया और करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित पीजी हॉस्टल्स का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बीते दिनों कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोटा के गोपालपुरा मंडाना में आम सभा को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस वे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास का हाईवे है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से 75 से 80% काम पूरा हो गया है, शेष काम भी तेजी से प्रगति पर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और भारत माला जैसी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कोटा को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कोटा जिले को प्रमाण पत्र और 9 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर सम्मानित किया। पिछले दिनों कोटा बारा झालावाड़ न्यायिक क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों की पहली त्रैमासिक वर्कशॉप कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर इस सेमिनार का उद्घाटन किया। श्री भाटी ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में जजों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने को भी कहा। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रारूप पर सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला परिषद सभागार कोटा में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समानता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा विधिक स्पष्टता जैसे विषय पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव सियाम ऑडिटोरियम में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जेवीवीएनएल और अन्य विभागों में चयनित 1207 नए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र और बधाई संदेश प्रदान किए। इसी के साथ कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कई सरकार कर्मचारी कल्याण का ने महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो सरकार देश री कानून व्यवस्था ने बत्ती सरल, साफ गोई और नागरिक केंद्रित बनावन का नहीं बरोबर काम कर रही है। सरकार एथेनॉल मिलिया पेट्रोल ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है और प्रदेश में मानसून रहे धीमो पड़नो, उमस भरी गर्मी रो असर आथुनी और सर्दी हल्का माय दिन रो तापमान बढ़ियो। समाचार रहे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि जनसेवा में समर्पित अहलकार और कार्मिक सुशासन रो मूल आधार है। वणा कहो कि जन

0: कल्याणकारी योजनावां और नीतियां में संवेदनशीलता साफगोई और भगत सर धरातल माथे उतारण हुए सुशासन स्थापित होवे है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों का निया सम्मान जलसा में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि शासन सचिवालय प्रदेश री 8 करोड़ जनता री आशावा और अपेक्षा रो केन्द्र है और हर कार्मिक गुड गवर्नेंस री धुरी और विकसित राजस्थान 2047 रो महताऊ सारथी है। मुख्यमंत्री कहो कि हमारी सरकार कर्मचारी कल्याणकारी ऐतिहासिक कदम उठाया है और कर्मचारियों रा हित में प्रतिबद्धता रे साथ है काम करिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि केंद्र सरकार देश रा न्याय बंदोबस्त ने बत्ती सरल साफगोई तकनीक पूर्ण और नागरिक केंद्रित बनावन सारू बरोबर काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नुआ अदालत परिसर टावर ऑफ जस्टिस रा उद्घाटन मौके वणा कहो कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिकारी संवैधानिक जिम्मेदारियों में न्याय री मूल भावना साकार होवे है और राष्ट्र प्रगति रा पथ माथे आगे बढ़े है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
0: जलसा में सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा और पंजाब री अदालतों रा न्यायाधीश और न्यायिक एहलकार मौजूद रिया। जोधपुर हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल आज बरोबर हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जातिया ने टिकट और स्वागत किट देर वारो स्वागत करियो। इस दौरान बेंगलुरु पहली फ्लाइट रा यात्रियों रोई रीत मुजब राजस्थानी लोक संस्कृति रे साथ स्वागत करीजियो। मीडिया साथ है बतलमा श्री शेखावत कहो कि नुआ टर्मिनल रे शुरू होवन लाड़ला 12 साल चाल रहा इंतजार आज पूरो भी हो। वना कहो कि 8वीं नियमित विमान सेवाओं रो संचालन वेणु आखा मारवाड़ सारू ऐतिहासिक कामयाबी है।
2: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूं वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया और जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
0: ध्यान जोगे के जोधपुर हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने करियो हो। 480 करोड़ रुपया की लागत 37 एकड़ में बनिया ई टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश दरवाजा है और जातिया ने सीधा हवाई जहाज ताई पुगावन सारू कई आधुनिक सुविधा विकसित करीजी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो है कि जलवायु बदलाव घनी चिंता रो संकेत है। इस संकट निपटन सारू केंद्र सरकार कई पहल करी है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में बोलता श्री चौहान कहो कि आखी दुनिया जलवायु बदलाव और धरती रो तापमान बढ़ने लेर चिंता में है। वना कहो कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा बूता में महत्व बढ़वार भी है। श्री चौहान एक पेड़ मां के नाम अभियान और मिशन लाइफ सरी की पहलारो जिक्रो करता कहो कि भारत साल 2070 ताई शून्य कार्बन उत्सर्जन रो लगस तय करियो है।
3: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसका मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका उनका स्वास्थ्य उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा वनों की कटाई प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: मानसून रे आवण रे साथ ही प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम रखा जावे। इस कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

0: आज कोटा में व्याप वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करी। ई मौके वना पौधा लगार लोगों हरित राजस्थान सारू सक्रिय भागीदारी निभावन री अर्ज करी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सरकार सोशल मीडिया माथे चादरी उन फर्जी तस्वीरों खंडन करियो है, जिनमें दावो करी जो है कि इथेनॉल मिला पेट्रोल वाहन रा इंजन टैंक में समस्या वह सके है। पीआईबी री तथ्य जांच इकाई ई दावा ने झूठो बतावता कहो है कि तेल विपणन कंपनियां कानी सप्लाई किया जाऊ वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो रा तहत मानका मुजब है। पीआईबी पेट्रोलियम मंत्रालय रा हवाला हूं भरोसो दियो है कि भारत में सप्लाई किया जाऊ वाला इथेनॉल मिला पेट्रोल में ऊंची गुणवत्ता मानका नु पालन करीजो है और उपभोक्ताओं ने मुहैया कराया जाऊ नु पहला इनरो गहराई रसाते परीक्षण करियो जावे है। पीआईबी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 350 रूपया प्रोसेसिंग फीस जमा करण माथे 500,000 रूपया रो कर्ज मंजूर होने रो दावो करण वालो एक फर्जी कागज बतायो है। पीआईबी लोगों इन तरह रा फर्जी संदेशों सावचेत रहवान और किनी तरह रा रूपया नी भेजन और आप ही खुद री बैंक री जानकारी साझा नी करण री अर्ज करी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानी आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चालन वाली आ भर्ती परीक्षा कुल 9651 औदा सारू वेरी है। इस सारू प्रदेश रा 27 जिला में 1232 परीक्षा केंद्र बनाई गया है। आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान री परीक्षा माली रही।
1: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूब जावणु आज 3 सगा भाई बहना समेत 4 टाबना री मौत वेगी। पुलिस बतायो के हादसा रा शिकार ए टाबर जिला रा धंबोला हल्का रा बड़ी गांव रा रहवासी हा और एनिकट में सवारा नावण गया हा। ई दौरान घणी गहराई में जावणु ओ हादसो भियो। हादसा रे दौरान दो टाबरा ने आरे सारे रा लोगा भगत रहता बचा लिया। पाली जिला में कपड़ा रा पैकिंग बैगरी के यूनिट आदिना स्थापित हुई है। इनमें घनकरा कुटीर उद्योग रा तौर माते पिछाण बनाई है। मारा खबर ने इस बतायो कि जिला में 20,032 महिलाओं घर माते पैकिंग बैग तैयार करने कपड़ा बनावन वाली इकाया ने भेज रही है और आत्मनिर्भरता कानी आगे बढ़ रही है।
2: विभिन्न वस्त्रों के पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है, बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़न गर्मी रो असर एक और फिर दिखन लागो है। सरदी और आथोणी जिला में दिन रो तापमान बढ़न लागो है। श्री गंगानगर में लाला 24 घंटा रे दौरान बत्ती रो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज करी जो। वठी फलोदी और जैसलमेर में दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे रिकॉर्ड भी हो। घनकरा जिला में बिरखारी गतिविधियां थम जावानों कास्तकारा रा चेहरा माथे उदासी देखी जावे। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चालन जिंदगी माथे असर पड़ियो। ई बीचे मौसम महकमो कहो है कि सैटेलाइट इमेज में राजस्थान रे ऊपर मानसूनी बादल अजय नजर नहीं आ रिया है। महकमा मुजब आवता 3-4 दिन बिरखारी गतिविधियां में कमी बनी रहन री आस है। सरहदी जिला रा श्री गंगानगर में महिलाओं ने काम री ठोड बरोबरी देवण और भेदभाव उत्पीड़न माथे रोकथाम सारू आज सेमिनार भी हो। राजस्थान हाईकोर्ट रा न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविन्द्र कुमार कार्यक्रम में शिरकत करी। ई दौरान कई न्यायिक कर्मी मौजूद रिया। सेमिनार में न्यायिक कमारे दौरान और फैसला में महिला सम्मान भाषा काम में लेवण और काम री ठोड महिलाओं रा हक री जानकारी दीरी जी। हनुमानगढ़ जिलो आज आपरो 32वो थापना दिवस मनावे। तीन दिन रा उत्सव रा आखिरी दिन आज भटनी दुर्ग में पूजा अर्चना रन

हनुमानगढ़ भी हो। ई मौके न्यारी न्यारी होना भी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा ही रोपी जा। मैं अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर्फ्यू सुन रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसेवा माए समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कहो सरकार कर्मचारी कल्याण कानी महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो सरकार देश की न्याय व्यवस्था ने बत्ती सरल सातगोई और नागरिक केंद्रित बनावन कानी बरोबर काम कर रही है। सरकार इथेनॉल मिला पेट्रोल ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है। और प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़नो उमस भरी गर्मी रो असर आथुनी और सर्दी हल्का माय दिन रो तापमान बढ़ियो। मैं इंद्र साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यू मारो आगरो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम में गांव मसौरा मत वाला सब किसान भाइय ने बुन रहे शंकर भाई नू राम राम। किसान भाइयों, हाज नुटेम है, ठंडी हवा सालरी थकी है ने साठना दाणा आवी है ने मौसम ने बदलाव नो टेम भी है ने हाथे हाथे अपने किसान भाइयों ने खेती बाड़ी नो टेम भी है। किसान भाइयों ने फसल जो है खरीफ ने इन्हें बुआई कर भी है ने कई किसान भाई तो बुआई करी भी दीदी होगा। किसान भाइयों, अपने बात करूंगा नाबार्ड ने बारे में। नाबार्ड जो है इन्हों आज स्थापना दिवस थे 12 जुलाई ने दाने अनो स्थापना दिवस मनावे। नाबार्ड इटले राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आने कई ने आनो स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ने दाड़े थई थी। नाबार्ड जो नाम है ई आनो अंग्रेजी जो नाम है इन्हें मलावी में बने थको है NABARD अंग्रेजी में शब्द है। एन थकी नेशनल बैंक, बी थकी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये मानो नाम है ने आने छोटा रूप में नाबार्ड कहे। अन स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में दड़े थी थी अन मुख्यालय मुंबई में है ने अन उद्देश्य जो है कृषि ग्रामीण विकास सरकारी संस्थाएं ने ग्रामीण वित्त व्यवस्था है इन्हें सुदृढ़ करवो। भारत में कृषि ने ग्रामीण विकास ने सर्वोच्च विकास वित्तीय संस्था है ने अन जो मुख्य उद्देश्य है एक किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र सहकारी संस्थाएं ने ग्रामीण जो उद्योग है इनने वित्तीय ने विकासात्मक सहायता आलो। नाबार्ड जो है ये स्वयं सीधो किसानों ने ऋण न ले पर आ क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है ने सहकारी जो बैंक है इनने वित्त उपलब्ध करावे ने किसान है, पशुपालक है, मत्स्य पालक है ने ग्रामीण उद्यमी है इनने आसानी थी कि ऋण प्राप्त कर सके। कृषि ने उत्पादन ने बढ़ावाने वास्ते योजना ने प्रोत्साहन आले। बागवानी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्र है इनमें सहायता करें। ग्रामीण कुटीर लघु उद्योगों ने विकास में सहयोग करें।

0: ग्रामीण सड़कें हैं, पुल हैं, सिंचाई है, पेयजल है आदि परियोजना में वित्तीय सहायता आने ने आरआईडीएफ ने माध्यम थकी राज्य ने सहायता प्रदान करे। महिलाओं जो है इनने स्वयं सहायता समूह ने बैंकिंग प्रणाली थकी जोड़वानो काम करे। गरीब ने वंचित वर्ग तक ऋण ने बचत सुविधाएं पहुंचाबू। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन ने बढ़ावा आलवो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने निगरानी ने निरीक्षण। राज्य सहकारी बैंक ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक नो पर्यवेक्षण करवो। बैंक ने कार्यक्षमता सुधारवाने वास्ते प्रशिक्षण ने मार्गदर्शन आलवो। जिला स्तर माते क्रेडिट प्लान तैयार करवो। बैंक राज्य सरकार ने अन्य संस्था ने वश में समन्वय स्थापित करवो। कृषि ने ग्रामीण क्षेत्र में ऋण आवश्यकता नो आकलन करवो। किसान भाई सहकारी संस्थाएं ने बैंक कर्मचारियों ने प्रशिक्षण आलवो। जल संरक्षण आदिवासी विकास किसान क्लब ने एफपीओ जीवी योजनाओं ने बढ़ावा आलवो। नवाचार ने टिकाऊ कृषि पद्धतियों ने प्रोत्साहित करवो। आ सब काम नाबार्ड करे ने इस नाबार्ड नो आजे स्थापना दिवस है। किसान भाइयों नाबार्ड खूब अच्छी संस्था है जो आने सब योजनाओं में काम करे। तो खरीफ में जे खेती किसान भाइयों आपने करी नहीं थका हो और एक किसान भाई मक्का भी करी रहूंगा ने हाथे खरीफ में सब्जी भी किसान भाई करता हूंगा। आवास एक किसान भाई थकी मारी बात थी जे खरीफ में फसल ने बुआई कर दी थी है। तो ये किसान भाई हकरू भाई थी कि जे मारी बात थी ये अपने हमरा इन अनुभव हमरा ने इन्हें बाद में आकर बीजे विषय में तो अपने अगली चर्चा करूंगा।
1: राम राम राम
2: राम
1: हो नाम है भाई तमारू
2: हकरू
1: भाई।
2: हाँ
1: अपने गाँव नु नाम है
2: रघावा।
1: अपने कई तहसील में आवे
2: तलवाड़ा।
1: अच्छा तलवाड़ा पंचायत समिति तलवाड़ा।
2: हाँ तलवाड़ा
1: तहसील बांसवाड़ा से।
2: तहसील बांसवाड़ा।
1: अच्छा तो एक बात बताओ मैंने हकरू भाई तुम कितने साल तक की खेती करी रहो?
2: साल तक मैं बचपन से खेती कर रहा हूँ।
1: अच्छा बचपन से ही खेती करी रहो?
2: हाँ
1: तो तुम्हें
2: बाप दादा भी खेती करता है ज्यादा हम भी खेती करी।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ
1: तो तुम्हारे पास कितनी जगह होगा क्षेत्र में?
2: हमारे पास 10 बीघा जमीन है।
1: 10 बीघा जमीन है?
2: हाँ
1: 10 बीघा जमीन तुम्हारे एकला नहीं?
2: ना हमारे 5 भैया नहीं।
1: 5 भैया नहीं है?
2: हाँ
1: तो पस तो खेती तो तुम करता होगा तो ये सब मलिन करता होगा?
2: हाँ सब मलिन ही करांगा।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ
1: तो खेती करवा में कौन कौन सहयोग करे तुम्हारे?
2: 5 भाई हम हमारे काका बाबा है सब है हमारे।
1: अच्छा बहरी करे?
2: बहरी भी करे हमारे परिवार पूरा अभी गये होंगे।
1: अच्छा सूर्य भी अभी गये
2: सब अभी गये पूरा परिवार
1: सब मलि नहीं करो?
2: सब मलि
1: એટલે 10 બીઘા જમીન એટલી મોટી જગા હે તો સબને મળીને કરવું જ પડે।
2: હા
1: તો હવે તમે કોઈ ફસલ કરી રાખી?
2: હવે મક્કી ઓરી રાખી।
1: અચ્છા મક્કી ઓરી રાખી।
2: હા
1: તો આપણે તો 10 વીઘા પૂરા મક્કા જ કરી?
2: હા પૂરા મક્કી જ કરી।
1: તો તમારે મતલબ મક્કા ને અલાવા બીજી ફસલ ભી થઈ શકે કે તમે મક્કા જ કરી રહ્યા કોઈ વિશેષ કારણ?
2: બીજી તો અમારે નહીં થઈ શકતી અમારે ડુંગળી છે મતલબ।
1: અચ્છા
2: અમી જગા નહીં છે।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ नहीं करता मकीज करा
1: नाम बीजी की भी था बीजे जगह मत
2: बीजी जगह मत सोया बीज भी था है हाल भी था है ने हियाड़ा में गेहूं भी था है सब। अच्छा, था है।
1: अच्छा अच्छा हाँ तुम्हें भी गेहूं भी करो?
2: हाँ हम भी गेहूं करा।
1: अच्छा अवड़े मक्की करी हो?
2: अवड़े मक्की दिवाली बाद गेहूं करा।
1: दिवाली बाद गेहूं करो? तो मैं उसके जो बीज लाता हूँ ये बीज के थे लाओ?
2: ये हमारे दुकान थे लाओ यहाँ तेजपुर की नजदीक मिली है।
1: अच्छा अच्छा
2: नहीं बास वड़ा देखी भी ले जा।
1: अच्छा तो इनमें पसे बीज लाता होगा तो कोई बिल बिल लेता हो?
2: हाँ लिया आले बिल
1: बिल आले। हाँ तो बिल थी क्यों फायदा?
2: बिल देखी दिन के मतलब मक्की खराब मरेगी है मक्की नहीं उगी है तो पाची रिटर्न भी करी सकाएं।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ रिटर्न भी करी सकते।
1: रिटर्न करीने पास पैसा पासा आले के बीजी बीजी
2: बीजी मक्की आले का
1: बीजी मक्की आले। हमने तुम्हें जब बुआई करी
2: हाँ
1: तो इन्हें बुआई वास्ते पहले कोई खेतर में तैयारी करी हो?
2: पहले तैयारी करी थे काढ़ी तो।
1: अच्छा
2: हाँ काढ़ी में भरा आई हूँ कैसे मक्की हो रही?
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ कैसे मक्की
1: इन बाद में अपना सिंचाई भी करनी पड़ी होगा।

किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त

किसान भाई हको भाई एमने थी अपनी बातचीत थी एने बताने जानकारी मिली कि एमने मक्का की खेती कर रहा था ने अपना किसान भाई भी आना मौसमी खरीफ की फसल है मक्का कर सके सोया बीज कर सके ने धान भी कर सके आ फसले बहुत मेहनत करीने किसान भाई खेती कर रहा था हाथे हाथे आना मौसम में किसान भाई सब्जी भी कर सके जिनमें बैंगन है मिर्च है टमाटर है तो आने वास्ते खेत में तैयारी करनी पड़ेगा बैंगन हारू पहली जुताई जो है मिट्टी पलटवा वाला जो हल है इन टिकी करवी जो है इन्हें बाद में तीन टिकी चार वगत बेसी हल चलाई ने पाटो लगाना पड़ेगा प्रथम जुताई ने पहले गोबर की खाद सामान्य रूप की नाखनी पड़ेगा ने गोबर की खाद अगर उपलब्ध नहीं है तो खेतर ने में पहले हरी खाद नो उपयोग करव जो है रोपाई करवाती की पहले सिंचाई की सुविधा ने अनुसार क्यारिये तथा तो सिंचाई में जो नालिये है इनमें विभाजित कर देवी जुए इनमें उन्नत किस्म ना प्रयोग करव जो है जिनमें अगर बैंगन लंबा वाला ने गोल वाला बे प्रकार ना हो तो बैंगन में बे प्रकार की किस्म है इनमें लंबा वाला जो बैंगन है इनमें पूसा पर्पल लौंग पूसा पर्पल क्लस्टर पूसा क्रांति आजाद क्रांति एस 16 पंजाब सदाबहार आ उन्नत किस्म है ने गोल बैंगन हरू पूसा पर्पल राउंड एच 4 पी 8 पूसा अनमोल पंत ऋतुराज आ सब जो है यानी प्रमुख उन्नत किस्म है ने बीज में जी मात्रा है अणमें एक हेक्टेयर में पौध रोपाई वास्ते 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता रहे ने संकर जो किस्में है इनमें 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज उपयुक्त रहे नर्सरी में पौध जो है ये तैयार करनी पड़ेगा जे खरी भी नर्सरी बड़ा भी है वे खरी अच्छी प्रकार थकी खुदाई करी ने खरपतवार ने निकालो ने अच्छी सड़ी हुई जो गोबर या पसे कंपोस्ट नी खाद है ये आवश्यकता अनुसार इनमें नाखनी पड़ेगा नर्सरी में बुवाई थकी पहले बीज जो है इनने थाइम या कैप्टन 2 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज नी दर थकी उपचारित कर देव जुए ने पसे इन्हें बुवाई करवी जुए अगर सूत्रकृमि रोग की समस्या हो तो 8 थकी 10 ग्राम काबाफ्यूरोन 3G प्रति वर्ग मीटर में हिसाब से की भूमि में मलावी देव जुए एक हेक्टेयर में पौध तैयार करवा वास्ते 1 मीटर चौड़ी में 3 मीटर लंबी करीब 10 थकी 15 क्यारियों में आवश्यकता रहे बीज जो है इन्हें 1 थकी 1.5 सेंटीमीटर में गहराई में माते ने 3 थकी 5 सेंटीमीटर ने अंतराल ने मते कतार ने में बुवाई करवी जुए ने बुवाई ने बाद गोबर नी बारीक खाद ने 1 सेंटीमीटर मोटी परत थकी ढाकी देवी जुए ने फव्वारा थकी सिंचाई करवी जुए खाद ने उर्वरक

किसान भाइयों, तेनो ये पूरो थई गयो है ने समय नो मान राखवो भी घणो जरूरी है। एटले शंकर भाई ने आलो इजाजत, ए आवजू, राम राम, राम राम।

सभी किसान श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने को हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को राजस्थान।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चवला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
2: खेती बाड़ी सुन रहा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम। और देखो किसान भाई, आपने घर में और बाग बगीचे कमाए बहुत सा अपना जो पौधा होने फूलों का फलों का, तो बने समय पर खाद पानी चाहिए, बने पोषण चाहिए। और आप रसोई घर की और घर की बात करें तो दोनों टाइम आप खाना भी खावा, और फल सब्जी की आप बात करें तो कोई ना कोई फल आप मौसम के अनुसार खाता रहेगा, और फलां का जगह छिलका ही माने बेकार समझ के आपा यही फेंक देवा। और फिर कचरे का माए देखो जो चीज जाए बिको एक कोई उपयोग तो हो को नहीं, और फल खा लिया तो छिलका को यदि कुछ सदुपयोग हो जाए तो आपने लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि केलो, आम, नींबू, सेब, संतरो कई प्रकार का फल आपा लेके आवा हा और खावा। तो यह जगह छिलका ही आने आपा फेंक बस चौको है कि आके इस्तेमाल से कई प्रकार की उपयोगी खाद आपा बना सका जिससे पौधा में पोषण मिले। अब केला के छिलका की अगर आपा बात करा तो एक माए पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जावे है। एक जो खाद है मिट्टी का माए सूक्ष्म पोषक तत्व यानी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ावे के साथ में फूल और फल को उत्पादन बढ़ावे है। अब केले के छिलका की जो उपयोग की आप बात करा तो 1 लीटर पानी कमाए 2 केले का छिलका 4 दिन तक आप छोड़ दिया, बी के बाद में छिलका ने आप निकाल दिया और जो शेष बचेड़े जो तरल भाग है भी खाद के रूप में आप उपयोग कर सका। इसी पौधे की जड़ा के पास में और पत्तियां पर आप छिड़काव करा तो जो पौधा ही बाकी वृद्धि चौकी हो है, पौधा कमाए फूल और फल चौकी मात्रा में लागे। आम का छिलका की आप बात करा तो आम का छिलका कमाए विटामिन ए, विटामिन बी, कॉपर और फाइबर पाए जावे है। और इको प्रयोग करवासु जका पौधा ही वहां को विकास बहुत ही चौकी गति से होवे। अब प्रयोग करवा को जो तरीको है 203 आम का जका छिलका ही बने बारीक काट के और 1 लीटर पानी कमाए आप डाल दिया और 2 दिन तक रहवा दे, बिने छोड़ देवा।

0: फिर इन्हें आप छान लिया और इन्हें 2 लीटर साफ पानी मिला के 4 से 6 सप्ताह कमाए। आप एक बार छिड़काव यदि करा तो पौधा कमाए फूल और फल जबकि झड़बा की समस्या है भी को समाधान हो जाए। अब नींबू का छिलका की बात करा पा तो जगह नींबू का छिलका ही यह पौधे कमाए पोषक तत्वों की पूर्ति करें और यानी मिट्टी कमाए आप पाउडर के रूप में प्रयोग कर सका। नींबू का छिलका ने आप बारीक पीस के पाउडर बना लेवा, फिर 5 से 7 सप्ताह कमाए 1 मुट्ठी प्रति पौधो यदि आप पाउडर में डाला तो पौधे की जगह पत्ते ही माँ कमाए जो हरेपन अभी की मात्रा बढ़ जाए और पौधे को जो विकास है वो भी ठीक प्रकार से हो। और साथ में देखो जो नींबू का छिलका को पाउडर का आप प्रयोग कर रहे तो इसमें कीट व्याधि को जो प्रकोप है पौधे में वो भी कोनी हो। इस प्रकार से जो संतरा का छिलका ही माना आप उपयोग कर सका। हाँ, संतरा के छिलका में पोटाश, लोहा, जस्ता और साइट्रिक पाए जावे है। ये पौधा कमाए जगह सूक्ष्म पोषक तत्व ही बाकी पूर्ति करे। इन्हें प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में आप उपयोग कर सका। प्रयोग करवा को जो तरीको है 1 लीटर पानी कमाए 2-3 संतरा का जगह छिलका ही बने डाल के 3 दिन तक आप छोड़ देवा। फिर उन्हें छान के भी कमाए 3 लीटर साफ पानी मिला के क्योंकि पौधे की पत्ती और जड़ के आसपास में आप छिड़काव करा। ये छिड़काव से जगह पौधा ही बिकमाए फल भी जल्दी आवे और फूल भी और कीट व्याधि को जो प्रकोप है वो भी पौधे कमाए को नहीं हुआ। इसके साथ में आप देखो सेब का छिलका की बात करा तो सेब का छिलका भी खाद के रूप में काफी उपयोगी हुई। आ कमाए पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी और कैल्शियम पाए जावे है और यो पौधे की बढ़वार के लिए काफी आवश्यक है। तो 2 से 3 सेब का छिलका लेके आप 1/2 लीटर पानी कमाए मिला के पीस देवा और 1 लीटर पानी मिला के 6 से 8 सप्ताह कमाए यदि एक बार आप उपयोग करा तो जबकि पौधे की पत्ते ही माँ की बढ़वार चौकी हो और फूल और फल भी चौकी मात्रा में लागे। तो इस प्रकार से देखो जगह फला का छिलका ही बने आप कचरा कमाए फेंकवा के बजाय यदि खाद के रूप में उपयोग करा तो अपना जगह घर का पौधा ही बाकी चूंकि बढ़वार हो कमाए फल फूल चोखा हुए और पौधा ने पोषण भी मिले। तो अब आप कार्यक्रम कमाए जानकारी की बात करा तो देखो आज की जो जानकारी है वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शंभूलाल सोनी सहायक निदेशक कृषि कृषि आयुक्त जयपुर से आप आए हैं तो जानकारी लेवा। तो किसान भाइयों आपने बीच आज मौजूद है डॉक्टर शंभूलाल सोनी सहायक निदेशक कृषि कृषि आयुक्त जयपुर से आप आए हैं और किसान भाई ने आज जानकारी दी थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो डॉक्टर शंभूलाल सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम के माये। राम राम।
1: राम राम सर।
0: डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहली तो जो माता किसान भाई ही बने यह बताओ कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कहीं है, इसकी शुरुआत कब हुई और कहीं उद्देश्य ही का।
1: किसान भाइयों ये भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। अपने राजस्थान की अपन बात करें तो अपने राजस्थान में देश के कुल क्षेत्रफल का 10.5% क्षेत्र ही सिंचाई के अंतर्गत आता है जो कि सिंचित क्षेत्र है और देश के कुल जल संसाधन का मात्र 1% ही अपनी जल सिंचाई उपलब्ध है। तो इस उपलब्ध जल का सबसे अच्छा सदुपयोग किया जाए, उसको कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु इस तरीके से उपयोग किया जाए कि अपने को कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई मिल सके और अधिक से अधिक अपन उत्पादन उससे ले सके। तो इस योजना के अंतर्गत अपन परंपरागत जो सिंचाई कृषि पद्धति जो अपनाते थे अपन उसको अपन बदल के सूक्ष्म सिंचाई योजना जिसके अंदर अपन स्प्रिंकलर योजना है, ड्रिप योजना है, मिनी स्प्रिंकलर है, मतलब इन पद्धतियों को अपना करके अपने को सिंचाई करते हुए उत्पादन को बढ़ाना है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
0: तो साहब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं तो ये योजना को उद्देश्य कहीं है किसानों के लिए।
1: देखिए किसान

0: इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह स्पष्ट है कि अभी जैसे सिंचाई योजना से संबंधित है तो अपने पास जो कम पानी है या जो भी पानी अपने पास उपलब्ध है उसका सबसे अच्छा सदुपयोग करना है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो हर खेत को पानी मिले, जो उपलब्ध पानी है वो हर खेत को उसके पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो। दूसरा है जितना भी अपना एरिया है उत्पादन वाला या सिंचित एरिया या कृषि वाला जो एरिया है उसकी इरिगेशन की कवरेज बढ़े, यानी उसके अंदर अपन अधिक से अधिक एरिया के अंदर फसल ले और उसकी सिंचाई अपन कर सके, ठीक है सर। दूसरा जो उद्देश्य है वो है कि प्रत्येक बूंद से अपने को अधिक उत्पादन लेना है, प्रत्येक बूंद से यानी पानी की हर बूंद का अपने को सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन उसका लेना है। इसके साथ ही जो अभी वर्तमान में जो कई कृषि योजनाएं जो चल रही है, ऑन गोइंग जो मेजर जो कृषि सिंचाई योजनाएं चल रही हैं उनको अपने को उनको बढ़ाना है, उनमें किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। इसके साथ ही वाटर सेड डेवलपमेंट जो स्कीम चल रही है सरकार की, उसके अंदर भी जो सोइल मतलब मृदा और नमी का संरक्षण करना है, जो बरसात का पानी आता है उसको अपने को संरक्षित करना है और ग्राउंड वाटर को बढ़ाना है, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ में राज्य में जो सीमित जल संसाधन है उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने को कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई संयंत्रों के माध्यम से सिंचाई की दक्षता में बढ़ोतरी करनी है और सिंचाई जल की बचत करनी है। इससे क्या होगा कि फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पाद गुणवत्ता में भी प्रभावी बढ़वार होगी। सबसे बड़ा इसका फायदा एक और है कि जैसे अपन ये स्प्रिंकलर और ये ड्रिप इरिगेशन अपन काम में लेते हैं तो इससे अपन ना फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, यानी सिंचाई के साथ में अपन फर्टिलाइजर का उपयोग भी उसके अंदर खेती के अंदर फसल को अपन दे सकते हैं और ऑटोमेशन जैसी तकनीक भी अपन काम में लेकर पौधों की मांग के अनुसार अपन ना सटीक मात्रा में जल, जितनी मात्रा में पौधों को जल चाहिए उतनी मात्रा में अपन जल दे सकते हैं और उनको पोषक तत्व की आपूर्ति भी अपन पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार उसके अंदर दे सकते हैं। इससे उसकी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ में गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से इसके मुख्य उद्देश्य ये है
1: जी। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आप बात कर रहे हैं तो अपना जगह किसान भाई इस योजना को लाभ लेना चाहे, इसे जुड़ना चाहे तो कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए इस योजना के वास्ते?
0: किसान भाइयों, इस योजना में आपको लाभ लेने के लिए कई जो सरकार ने गाइडलाइन दिशा निर्देश बना रखे हैं वो इस प्रकार है कि जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व हो वही उसका लाभ लेगा। उसके नाम पे जैसे उस पर कुआ होना चाहिए या जल का संसाधन होना चाहिए, साथ में लाइट हो, डीजल का पंप लगा हुआ हो या सौर ऊर्जा से संचालित हो या ट्रैक्टर चालित पंप सेट उसका लगा हुआ होना चाहिए, वो अनुदान लेने के लिए इसके अंदर योजना के अंदर पात्र होंगे। दूसरी चीज, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर न्यूनतम 0.2 हेक्टर कम से कम जमीन होने चाहिए तथा अधिकतम 5 हेक्टर तक प्रति लाभार्थी की सीमा में उसको अनुदान देने के लिए जमीन होनी चाहिए। अगर मान लो किसी किसान ने 5 हेक्टर से कम क्षेत्र के लिए अनुदान पूर्व में लिया हो तो वो 5 हेक्टर तक सीमा में अनुदान लेने के लिए वापस से दोबारा से वो आवेदन कर सकता है, यानी दोबारा से फार्म भर के वो आवेदन 5 हेक्टर तक का आवेदन ले सकता है, अनुदान ले सकता है। तीसरा है, जिन किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए केंद्रीय अनुदान लाभ पहले ले लिया है यानी सेंट्रल से अगर उसको पहले से लाभ मिल गया है तो वह उसी भूमि में सिंचाई प्रणाली की अनुमानित आयु यानी 7 वर्ष की समाप्ति तक, यानी 7 साल के बाद ही उसको अनुदान प्राप्त मिलेगा, यानी 7 साल से पहले वो अनुदान इस योजना में नहीं ले सकता। सबसे लास्ट की जो पात्रता के लिए है शर्त वो है कि जिन कृषकों ने पूर्व में ड्रिप और फव्वारा पर अनुदान ले रखा है और वो क्षेत्र विस्तार के तहत अनुदान तो आवेदन किया है तो ऐसे कृषकों को इस वर्ष की देय अनुदान राशि से ही गणना की जानी है, यानी उसके जो पहले अनुदान लिया उसको इस साल के जो अनुदान उसकी प्लस माइनस करके उसको जो बाकी अनुदान है वो मिलेगा। और जो अनुदान के लिए जो वांछित मॉडल विभाग ने तय कर रखे हैं भाई इस मॉडल के सेट के लिए उसको अनुदान दे होगा, उसके अनुसार उसको अनुदान दे होगा, वही कृषक इसके लिए पात्र होंगे
1: जी। और डॉक्टर साहब, जो आय योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें जगह अपना किसान भाई ही जदबाना लाभ मिले तो एक मैं कई उपकरण भी जिका ही वह दिया जावे किसान ने कृषि जिका सिंचाई उपकरण हो।
0: हाँ, किसान क्या जैसे आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद में है ना वो स्प्रिंकलर सेट या मान लो ड्रिप लगा रहा तो ड्रिप खरीद लेगा या मिनी स्प्रिंकलर लगाना चाहता है मिनी स्प्रिंकलर खरीद लेगा। तो वो क्या होगा, मार्केट्स में जो विभाग द्वारा जो अनुमोदित फर्में हैं
1: जी
0: है ना, स्वीकृत फर्में हैं, उन फर्मों का ही वो ये संयंत्र खरीद के अपने खेत पर सेट करेगा। तो इसके अंदर योजना के अंदर कृषकों को है ना ऑनलाइन आवेदन पहले सबसे पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन आवेदन ई मित्र के माध्यम से विभाग के जो एक पोर्टल बना हुआ है राज किसान साथी पोर्टल, उस पोर्टल पे जाके उसको ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। और आवेदन में उसको जैसे जमाबंदी है, उसका बिल वगैरह है ना, ये चीजें जो दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको लगा के उसको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद में जिला स्तर पे जो हमारे विभाग के अधिकारी है उन फार्मों की उसकी स्क्रूटनी करेंगे यानी कि उनकी छटनी करेंगे, अगर कमी होती है तो उसको वापस लौटाएंगे, उसकी कमी पूर्ति करवाते हैं। और जैसे उसका फार्म कंप्लीट होता है, कभी आवेदन एकदम उसका बिल्कुल सही है, उसके बाद में विभाग द्वारा उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकाली जाती है।
1: अच्छा।
0: तो प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में ही किसान भाई संयंत्र बाजार से खरीदे और उसको स्थापित करे अपने खेत पर। किसान द्वारा चयनित जो विभागीय पंजीकृत निर्माता है उनके द्वारा ही है ना वो खरीदने हैं, और उनको कृषक हिस्सा राशि जो उनकी बनती है यानी फार्मर शेयर बनता है अनुदान के अलावा, वो उनको जमा करानी है, उसके पश्चात ही उसका स्थापन करना है। और जैसे ही वो स्थापित कर लेगा अपने संयंत्र, मान लो ड्रिप लगा लिया, फवारा लगा लिया या मिनी स्प्रिंकलर लगा लिया, तो विभाग के अधिकारी उसके क्षेत्र में जाएंगे और उसका भौतिक सत्यापन करेंगे, कभी उसने कितने के लिए आवेदन किया है और कितने उसने ड्रिप या वो इरिगेशन संयंत्र लगाया है। भौतिक सत्यापन में सही पाए जाने पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट वो विभाग का अधिकारी वहां प्रेषित करेगा विभाग को, और उसके बाद में उसके कृषक की सहमति पर जो संबंधित आपूर्तिकर्ता जो फर्म है उसको वो अनुदान की राशि वो अलॉट कर दी जाएगी। इस प्रकार से संपूर्ण इस योजना के अंदर लाभ लेने की प्रक्रिया है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मैं जो को सरकार किसान भाई ने अनुदान जो को देवा है, तो इस योजना के अंतर्गत किसानों ने कतरो अनुदान दिए जाए।
0: किसान भाई, इस योजना के अंतर्गत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर, इसके लिए लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी जो है उनको कुल देय अनुदान है 75% लागत का। इसके साथ ही एससी एसटी और महिला कृषक है उनको भी 75% अनुदान देय है, और जो अन्य कृषक है, अन्य श्रेणी के जो कृषक है इनके अलावा उनको 70% अनुदान देय है। इस प्रकार ड्रिप, मिनी एवं स्प्रिंकलर संयंत्रों पर लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को इकाई लागत का 75% एवं अन्य कृषकों को इकाई लागत का 70% अनुदान देय है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप बताया, जानकारी दी, पर अब चलता चलता आपने किसान भाई ने इस योजना के बारे में कोई जरूरी बात यदि रहेगी और किसान भाई से आप बताना चाहो तो आप बता सको।
0: किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो अपने यहाँ वैसे भी मैक्सिमम 60-65% जो अपनी खेती है वो वर्षा आधारित है, तो अपन वर्षा का जल भी संग्रहण करें वर्षा के अंदर, उसके अंदर फार्म पूर्ण योजना जो विभाग की है उसके अंदर ले लें, इसके साथ में जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें आप आवेदन करके अपने खेत पर मिनी स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन लगा के जो आपके द्वारा संचित किया हुआ जो जल है उसका आप समुचित उपयोग करें और अधिक से अधिक खेती यानी अधिक से अधिक क्षेत्र में फसल उगाते हुए अधिक से अधिक उत्पादन लेवे, ये इसका ध्येय है। और इस ध्येय के अंदर आप लोगों के सहयोग की पूरी आवश्यकता है कि भाई अपन राजस्थान में जो जल है उसको अधिक से अधिक उत्पादन लेके अपने राजस्थान के विकास में भी अपन अपना हिस्सेदारी को बढ़ाएं
1: जी। तो किसान भाइयों, यही जानकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में डॉक्टर शंभूलाल सोनी, सहायक निदेशक कृषि आयुक्तालय जयपुर से आप आया और किसान भाइयों ने अति चौकी और उपयोगी जानकारी दी। इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम सर।

0: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। गवार, चवला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉप रोड, टॉप फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
2: तो किसान भैया, जानकारी तो अबार आपा सुनिया और जानकारी बोच चुकी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी शंभूलाल सोनी। तो चुकी सी जानकारी के बाद एक चौको सो लोकगीत भी आपा सुन लिया।

0: अंबिका मिश्रा की आवाज में यो लोकगीत हो। और अब लोकगीत के साथ ही जो है खेती बाड़ी को टेम पूरे हो चाले है। तो अब किसान भाई देखो बरसात को मौसम है तो शाम का बगत अपना जका पशुधन ही गाय भैंस बाने भी बांधवा की व्यवस्था रखो कि जो को पक्कू बाड़ा है बिकमा है शाम का बगत आप बांध देवा ताकि रात बिरात में छाट आवे तो वह भीख बासु बज्जा में आराम से बैठा रहे। अब महेश भाई ने देवा आज्ञा राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको राजस्थान।
2: किसान साथियों कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार चौला मूंग उड़द मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपने सुना किसान भाइयों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी। श्रोताओं, शाम के 8 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आइए फिल्म संगीत की इस कड़ी में अगला गीत सुनते हैं रिफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में।

अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था अनु मलिक ने। और श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत की इस कड़ी का अंतिम गीत, फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से, जिसे गाया है कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे हैं कैफी आजमी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये ऑनएयर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत और आगे कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, समाचार संध्या और फिर 9:15 पर उर्दू में समाचार, जिन्हें की आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा कुछ क्षण की प्रतीक्षा के बाद।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैंप के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैंप में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खेलों के मैदानों की हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चीन की जुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलीना की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ेरेव कुछ देर में होंगे आमने सामने। चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुखोवा को हरा करके अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब हासिल किया। इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। और एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत करके 16 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जो एकदम अंत की तरफ अपने बढ़ चला है और एक के बाद एक खिताबों के विजेताओं के फैसले होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलीना मडलेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कनाडा की ग्रैबेला डेबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से हराया। पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आपसे कुछ देर में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव के बीच में होना है। तो एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन यानिक है जो दूसरी तरफ फ्रेंच ओपन के विजेता ज़ेवरेव होंगे। इससे पहले चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। लिंडा ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए खिताबी मुकाबले में अपने ही देश की कैरोलिना मुखोवा पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: लिंडा नोस्कोवा ने कल विंबलडन के एक रोमांचक महिला सिंगल्स मुकाबले में कैरोलिना मुखोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराते हुए अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। दूसरा सेट हारने के बाद नोस्कोवा ने शानदार वापसी करते हुए अंतिम सेट और मुकाबला अपने नाम किया। 21 वर्षीय खिलाड़ी मुखोवा ने पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और सेट 7-5 से जीत कर मैच को निर्णायक सेट तक खींच लिया। हालांकि नोस्कोवा ने अंतिम सेट में फिर से नियंत्रण हासिल किया और अहम मौकों पर संयम बनाए रखते हुए मैच अपने नाम कर लिया। ये नोस्कोवा की पहली विंबलडन खिताब और एक बड़ी ग्रैंड स्लैम जीत है। 21 वर्षीय नोस्कोवा अपनी आदर्श खिलाड़ी और अपने देश के दिग्गज पेट्रा किवतोवा के बाद सबसे कम उम्र की विंबलडन चैंपियन बनी। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने जीत कर अपने नाम किया। इस एंग्लो फिनिश जोड़ी ने कल एल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के नेट पावेक को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। इसी के साथ पैटन ओपन एरा में 2 विंबलडन पुरुष डबल्स टाइटल जीतने वाले पहले ब्रिटिश पुरुष बन गए। पैटन और हेलियोवारा ने इससे पहले साल 2024 में यह खिताब जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैंप।
0: तो तमाम खिताब फाइनल हो गए हैं, बस बचा है मेंस सिंगल्स जो अब से कुछ देर में शुरू होगा 2 चैंपियन खिलाड़ियों के बीच। और अब रुक करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप का, जहां इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से और अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सुनते हैं इन दोनों मैचों का पूरा हाल।
2: इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड के इस जीत के नायक जूड बेलिंगम रहे, जिन्होंने अतिरिक्त समय में टीम के लिए विजय गोल दागा। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के 36वें मिनट में एंड्रियास शेल्डरूप ने पहला गोल करते हुए नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद बेलिंगम ने पहले हाफ में इंजरी टाइम में शानदार गोल दागते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा, जहां 93वें मिनट में बेलिंगम का

0: नजारे एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने मुकाबले का अपना दूसरा गोल करते हुए इंग्लैंड को 2-1 की बढ़त दिला दी जो अंत तक कायम रही।
1: Extra time and Jude Bellingham made the difference. It has finished. Norway 1, England 2.
0: इससे पहले इंग्लैंड 1966, 1990 और 2018 में सेमीफाइनल में पहुंचा था। 1966 में इंग्लैंड ने खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार शुरुआत मिली और 10वें मिनट में मिले कॉर्नर पर लियोनेल मेसी ने बेहतरीन क्रॉस दिया जिसे एलेक्स मैकएलिस्टर ने बिना कोई गलती किए हेडर की मदद से गोल में तब्दील कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत स्विट्जरलैंड के नाम रही। मैच के 67वें मिनट में टीम ने मुकाबले में वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। स्विट्जरलैंड की ओर से पहला गोल डैन एनजॉय ने किया। 90वें मिनट तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। मुकाबला अतिरिक्त समय में चला जहां 112वें मिनट में अर्जेंटीना के अल्वारेज स्विट्जरलैंड के डिफेंस को भेदने में सफल रहे और टीम को मुकाबले में 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद इंजरी टाइम में लोटारो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल करते हुए 3-1 से टीम की जीत पक्की कर दी।
1: Almada, the save, but the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semi-finals. Argentina's pursuit of greatness goes on. It is Argentina who move into the final four.
0: अब सेमीफाइनल में 15 जुलाई को अर्जेंटीना की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: अड़तालीस टीमों के साथ इस विश्व कप का अभियान शुरू हुआ था और अब यह आंकड़ा सिमट कर 4 टीमों पर आ चुका है। सेमीफाइनल की दौड़ एकदम स्पष्ट हो चुकी है और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष, हमारे सहयोगी विशेष। कौन कौन सी 4 वो टीमें हैं, इंग्लैंड और अर्जेंटीना को अगर हटा भी दिया जाए बाकी 2 टीमें कौन सी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और क्या तस्वीर है आने वाले मुकाबलों की?
3: शक्ति, जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो फ्रांस और स्पेन के बीच में खेला जाएगा। फ्रांस एक बहुत ही अनुभवी टीम है और विश्व विजेता भी रह चुकी है। वहीं अगर हम स्पेन की बात करें तो ये उनका सिर्फ दूसरा सेमीफाइनल होगा। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव होगा स्पेन के ऊपर क्योंकि फ्रांस ने 7 बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, 2 बार उन्होंने खिताब जीता है और 2 बार वो रनर्स अप भी रहे हुए हैं। तो इस तरीके से स्पेन के लिए काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अगर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वो मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस विश्व कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें अर्जेंटीना की तो वह 6 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है उन्होंने और 3 बार विजेता रहे हैं और 3 बार उपविजेता रहे हैं। और सबसे एक दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना ने आज तक कभी भी सेमीफाइनल मुकाबला नहीं हारा है, तो इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। और हालांकि इंग्लैंड ने भी एक बार विश्व कप अपने नाम किया है 1966 में और तीसरा सेमीफाइनल उनका ये होगा, एक बार वो विजेता भी रह चुके हैं।
2: जी बिल्कुल, तो इंग्लैंड वापस दोहराना चाहेगा 70 साल का इंतजार, तकरीबन 60 साल का इंतजार हो रहा है इंग्लैंड के लिए। टीम्स की अक्सर बात होती है कौन कौन से खिलाड़ी इस पर नजर रहेगी, गोल्डन बूट जो सबसे एक्साइटिंग फेज होता है इस विश्व कप का, कौन सबसे आगे नजर आ रहा है?
3: शक्ति, इस समय किलियन एम्बापे और लियोनेल मेसी दोनों 8-8 गोल के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन एम्बापे ने उनसे मेसी से ज्यादा असिस्ट किए हैं इसलिए वह रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर तीसरे और चौथे स्थान की बात करें तो वहां बेलिंगम और हैरी केन वो दोनों बने हुए हैं, लेकिन बेलिंगम ने ज्यादा असिस्ट किए इसलिए वे तीसरे स्थान पर, हैरी केन चौथे स्थान पर है। वहीं डेम्बेले जो है फ्रांस के उन्होंने 5 गोल के साथ वो 5वें स्थान पर बने हुए हैं।
2: जी बिल्कुल, मात्र गोल का महत्व नहीं है, महत्व उन खिलाड़ियों का भी है जो असिस्ट करके गेंद को गोल के करीब तक पहुंचाते हैं।
3: और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 19 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत के लिए यशिका भाटिका ने सर्वाधिक 113 रन और स्मृति मंधाना ने 70 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई थी और भारत ने इसके आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत के लिए क्रांति गौड़ ने बड़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेजा था और पहली बार वो जो बोर्ड है लॉर्ड्स मैदान का जहां पर उन खिलाड़ियों के नाम लिखे जाते हैं जो 5 विकेट हॉल हासिल करते हैं, क्रांति गौड़ का नाम अंकित हुआ है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस उपलब्धि पर क्या कहा।

0: रिलीफ देखा जाए, आज मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के सारे लोग मुझ पर प्राउड फील कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठी तो मैं सोच रही थी उस बोर्ड के साइड देख के, क्या सेकंड डे है हमारा, क्या जिसमें नाम लिखवाना है मुझे, करके 5 मिनट तक उस बोर्ड की साइड देखी, देन उसके बाद में नीचे गई थी। जैसे मैंने 5th विकेट लिया तो जैसे हर एक प्लेयर्स का अचीवमेंट, देन 5 विकेट की जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की थी मेरी।
1: बिल्कुल, और अब आईसीसी के दूसरे हॉल ऑफ फेम की तरफ चलते हैं, जहां भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने अपना नाम अंकित किया है। इन्हें क्लास ऑफ 2026 2026 का हिस्सा बनाया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। कल इसकी घोषणा की गई एडिनबर्ग में और अब कुल संख्या 125 हो गई है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने तीनों पूर्व कप्तानों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी।
2: भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने अपने करियर के दौरान भारतीय टीम को एक मजबूत टीम में बदला। शानदार बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन और 311 एक दिवसीय मैच में 11363 रन बनाए। बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट के इस दादा ने भारत को वर्ष 2000 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2003 के फाइनल तक पहुँचाया। उनकी कप्तानी में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का संयुक्त खिताब भी जीता। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों के बीच मेरा नाम शामिल होना मेरे सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। वहीं शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अंजुम चोपड़ा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज 1000 वनडे रन बनाने वाली और 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2002 में दक्षिण अफ्रीका में भारत को उसकी पहली विदेशी टेस्ट जीत दिलाई और आईसीसी महिला विश्व कप 2005 के फाइनल तक टीम के यादगार सफर में अहम भूमिका निभाई। यह सम्मान पाने पर अंजुम चोपड़ा ने कहा कि खेल कूद वाले परिवार में पली बड़ी होने के नाते मैंने क्रिकेट के दिग्गजों और उनकी बड़ी उपलब्धियों के बारे में कहानियां सुनी थी। भारत के लिए खेलने का सपना बहुत कम उम्र में ही मन में बस गया था। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान केविन पीटरसन को भी उनके शानदार करियर की उपलब्धियों के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: हालांकि एक बुरी खबर भी भारत के लिए इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड ने भारत को चौथे 5वें टी20 मैच में साउथहैम्पटन में 56 रन से हरा करके श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। निशानेबाजी में भारत की नीरू डांडा ने इटली के रोनाटो में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है।
3: Well, a great close-up on the cameras, and the cheers go up just off camera. We just caught him there, Pete Wilson, the coach, out of his seat, punch in the air. Still one more shot to go from Carole Comenier. It's another miss for the French athlete, but the moment that Nehru managed to nail the gold just happened a few moments ago. And you've got a feel for Carole Comenier. She shot so well, came into this final, made a really good start, a perfect start, actually.
1: एक शानदार प्रदर्शन और एक बेहतरीन खिलाड़ी, पहली ट्रैप खिलाड़ी बनी है भारत के लिए महिला वर्ग में, जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता, वो भी स्वर्ण पदक। और अब रुक करते हैं एथलेटिक्स का, जहां चीन के ओडोज में खेली जा रही एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने अपना शानदार अभियान 16 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 3 स्वर्ण पदक शामिल थे। और अब संडे का दिन है तो बात फिटनेस की जाए, यानी फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज देश में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसके 81वें संस्करण में आज नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। ये सुनते हैं सुमन देवी ने इस बारे में क्या कहा।
4: ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ न कुछ वर्कआउट करते रहे।
1: जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि साइकिलिंग जो है वो फिटनेस के लिए, पर्यावरण के लिए और तमाम पहलुओं से बेहद लाभदायक होती है। और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर उत्कर्ष सक्सेना ने भी फिट इंडिया संडे की सराहना की है और कहा कि ये स्वस्थ भारत बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात

0: इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता उत्पीड़न धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हुर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हुर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हुंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
0: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र

0: किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओवरडोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और

एक कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शुभम लोहाकरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हांजू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडिनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रही है। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके

भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि आबनाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिनमें 15 भारतीय सियाहों की मौत हो गई थी उनके जस्द खाकी को हो ची मिन्ह सिटी लाया गया है। अब उन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यैनिक सिनर और दूसरे दर्जे के एलेक्जेंडर ज़वेरेव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। भारत ने इस मदद पर ओमान के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के जारी वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। उसने एक बार फिर कहा है कि सिफारती हल के लिए जारी मुजाकिरात जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि आदनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुली है जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। अमरीका ने यह ऐलान ईरान के पासदारान इंकलाब IRGC की तरफ से आदनाए हुरमुज को मजीद कोई नोटिस जारी किए जाने तक बंद करने के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहे जाने के बाद दिया गया है कि आदनाए हुरमुज कमर्शियल जहाजों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि समंदर में जहाजों की आमदोरफ्त आदनाए हुरमुज के रास्ते जारी है और अमरीकी फौजें बकौल उसके ईरानी जारहियत हिरासानी धमकियों और मनमाने ऐलानात के बावजूद आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। उसने जोर देकर कहा कि ईरान आबनाए हुरमुज को कंट्रोल नहीं करता और महफूज राहदारी वाले रास्ते खुले हैं। वियतनाम के फूकोक जजीरे के करीब तेज रफ्तार कश्ती पलटने के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों का जस्द खाकी आज हो ची मिन्ह सिटी पहुंच गया है। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जरूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद महलूकीन के जस्द खाकी को हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। सफारतखाने ने कहा कि वो कौंसिल खाना और वियतनाम के हुक्काम के साथ राबते में है ताकि जस्द खाकी की वतन वापसी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। सफारतखाने ने बताया कि महफूज निकाले गए 17 भारतीय सियाहों में से 16 सियाह को भारत लाया जा रहा है जबकि एक सियाह जिसकी हालत संगीन बनी हुई है फूकवक के एक अस्पताल में जेर इलाज है। इस दौरान वियतनाम के सदर ली मिन होम ने हादसे की जांच का हुक्म जारी किया है और हुक्काम को हिदायत दी है कि कसूरवारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। आज मुल्क भर में शजरकारी की बड़ी मुहिम का एहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पूरी रियासत के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ मुहिम का आगाज किया। उन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे के नजदीक मुबारक त्रिवेणी यानी 3 दरख्त नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाए। उन्होंने ताल रिंग रोड पर मुलसरी का पौधा भी लगाया। रियासत में आज 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक तारीख रकम की है। एक पेड़ मां के नाम के उन्नाम से पूरी रियासत में शाम 6:12 तक कुल 35 करोड़ 27 लाख 89,926 पौधे लगाए गए। ये हुकूमत के 35 करोड़ के निशाने से 27,89,000 ज्यादा पौधे हैं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस हुसूलियाबी पर

0: प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जन भवन के अहाते में संदल का पौधा लगाया। तफसील हमारे नवा निगार से।
1: प्रोग्राम के दौरान जन भवन के नक्षत्र अधिकारी संदल के 29 पौधे लगाए गए। जन भवन के अफसरान और मुलाजमीन ने सिंधी खेड़ा के सरकारी गर्ल्स होम की लड़कियों के साथ मिलकर शिल्पकारी की इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहुत से वजरा और अवामी नुमाइंदों ने एनजीओ अरकान मुख्तलिफ महकमों तलबा और आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया। ये मुहिम रियासत के सभी 18 डिवीजनों और 75 जिलों में चलाई गई। रियासत में इस साल 5 जून को भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मजमूई तौर पर 24,29,00,000 पौधे लगाए गए हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
2: वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर गांधीनगर में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके दौरान आज उनके लोकसभा हलके में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र प्रोग्राम और पर्यावरण संरक्षण संकल्प तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ्फुज़ के लिए इंतहाई अहम है और इससे पायदार मुस्तकबिल की यकीन दहानी होती है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत पूरी रियासत में 21,00,000 पौधे लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज जोर देकर कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क के समाजी मुस्लिहीन के अजीम विरसे का एहतराम करें और उसे बरकरार रखें। जनाब राधाकृष्णन आज नई दिल्ली के द्वारिका के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाजी मुस्लिह और मुजाहिद आजादी मन्नथू पद्मनाभन के मुजस्मे की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मंदिर से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथू पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ मसावात तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के आवाम से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्याल और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800117800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वजीर आजम को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए रब्ता कायम कर सकते हैं। आइंदा नशे के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजरों के एक आला सतह के वफद की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इकतसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी अख्तरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी अमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्सर निगु रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी थे। उनकी उम्र 71 साल रही। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान ग्राहम अमरीका की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम आवाज के तौर पर उभरे थे। अमरीका बरतानिया और एक दर्जन दीगर मगरबी और एशियाई ममालिक ने आज दो बार जोर देकर कहा है कि बहिरे चीन में चीन के वसी दावे 2016 के साइंसी के फैसले की बुनियाद पर गैर कानूनी हैं। 14 ममालिक की तरफ से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो मुतनाजा आबी हदूद में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इकदाम को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इससे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। दूसरी जानब 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन ने एक अलहदा बयान जारी करते हुए इस फैसले को तनाजियात के पुरअमन हल के लिए एक तारीखी फैसला करार दिया है। ये बयानात 12 जुलाई 2016 को दहेग में कायम करदा ट्रिब्यूनल के साइंसी के फैसले के जुम्मन में आए हैं, जिसमें कहा गया था कि तारीखी

0: फैसला फरीकैन को हतमी और कानूनी तौर पर पाबंद बनाता है। ताहम चीन ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसकी पाबंदी लाजिम नहीं है। चीन ने इस बात का इरादा किया कि बीजिंग इसे तस्लीम नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए। बहुत सी जानें जमीनी तोदे खिसकने की वजह से जाया हुई हैं और बखिया ज्यादातर अमवात पानी में डूबने या सैलाब में बह जाने और दरियाओं की तुगयानी के सबब हुई हैं। अफगानिस्तान के जरात पाशी और मवेशियों की उम्र के वजीर अताउल्ला उमरी ने आज भारत का अपना 6 रोजा दौरा मुकम्मल किया। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान वजीर के साथ एक आला सतही वफद भी था। गुज़श्ता साल अक्टूबर के बाद से अफगानिस्तान की तरफ से वजारती सतह का भारत का यह चौथा दौरा था जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी की अक्कासी करता है। इस दौरे में अफगानिस्तान के वजीर ने भारत के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों फरीकों ने बाहमी ताल्लुकात में ज़राअत आबपाशी ज़रई तहकीक सलाहियत साजी ज़रई तजारत में तआवुन को फरोग देने पर तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक फर्जी तस्वीर से इंकार किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि एथेनॉल की आमंजिश वाले पेट्रोल से गाड़ियों के ईंधन की टंकी में खराबियां आ सकती हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हकायक मालूम करने वाली यूनिट ने इस दावे को झूठा करार दिया है। ब्यूरो ने कहा है कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने वजाहत की है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से सप्लाई किया गया E20 पेट्रोल भारतीय मयारात के ब्यूरो की तरफ से मुकर्रर किए गए पैमाने के मुताबिक है। वजारत ने कहा कि एथेनॉल और पेट्रोल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में जम हो जाते हैं और ये अलग नहीं होते और न ही किसी तरह की अलग अलग परतें बनाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मारूफ गुलकारा इस जानकी के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गया है। चीन के आर्डोस में एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 16 तमगों के साथ अपनी मुहिम खत्म की। इसमें सोने के 3, चांदी के 4 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत ने सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। विंबलडन टेनिस में मर्दों के फाइनल मुकाबले में लंदन में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरोव के दरमियान मुकाबला जारी है। सिनर ने नोवाक जोकोविच से सीधे सेटों में जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई है जबकि ज़वरोव ने ब्रिटानिया के आर्थर फेरी को शिकस्त देकर पहली दफा फाइनल में पहुंचे हैं। दूसरी जानब 10वें दर्जे की जोड़ी चीन की गुओ हानिंग और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादवेज ने खवातीन डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दूसरे दर्जे की जोड़ी कनाडा की गैब्रिएला रॉविस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3 7-5 से शिकस्त देकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। इंग्लैंड में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जारी खवातीन क्रिकेट के एक तारीखी टेस्ट मैच के तीसरे दिन अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने 7 विकेट पर 341 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग डिक्लेयर की और मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का निशाना रखा। कल इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 170 रन पर आउट हो गई थी। भारत ने अपनी पहली इनिंग में 285 रन बनाए थे। फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल की टीमें तय हो चुकी हैं। अर्जेंटीना इंग्लैंड फ्रांस और स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज सुबह खेले गए क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से जबकि अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत में ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि आबलाए हुर्मुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिन 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी उनके जस्दे खाकी को हो ची मिन्ह सिटी लाया गया है और इन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यानी सिनर और दूसरे दर्जे के गौरव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Delhi. Please stand by for our next broadcast.

0: from a lot of parts of India, like southern part, Bihar, UP, sometimes northeastern part of India too. We try to get them comfortable with us, give them the taste of their own.
1: He is the person who provides tasty food to the students.
2: मैं सदराम बिश्नोई कोटा. खाने में अपन साउथ इंडियन है, मारवाड़ी राजस्थानी खाना है, पंजाबी है, अलग अलग प्रांत के, यूपी बिहार के, जहाँ भी लड़का है हर रोज अलग अलग मेन्यू रहता है. एक न एक आइटम उनके स्वाद की रहती है. जैसे मारवाड़ी लड़के हैं दाल बाटी रहती है, यूपी बिहार के है तो चावल है, जैसे आलू की सब्जी है, लिट्टी चोखा है, तो वो बच्चे उनसे संतुष्ट हो
1: गए.
3: अंकित कुमार गुप्ता आपका नाम है
4: जी.
3: बिहार छपड़ा.
5: मेरा नाम मधुमेहरा है.
6: मेरा नाम तानिया सीनी है.
5: किस चीज का बता रहा हूँ.
6: या मोस्टली आई एम सैटिस्फाइड विद द फैसिलिटीज आई एम गेटिंग. फ्री आई एम गेटिंग वाई फाई कनेक्शन एंड क्वाइट अ गुड रूम एंड बेसिक फैसिलिटीज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय पीजी रेजिडेंट इज ऑल गुड इन अ सर्वाइवल मोड आई गेस.
1: लेट्स हेड नॉर्थ टू दानंद पंजाब, द मैसिव हब ऑफ एनआरआईटी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. Sanandar's PG culture spiked in the late 2000s to cater to massive private university campuses. Jalandhar, a hub of education, industry and dreams. Every year, thousands of students and young professionals pack their bags, leave their hometowns and arrive at the Jalandhar City Railway Station or the model town bus stops.
7: I am Priya Jinswal and I come from a very beautiful place which is Nainital, situated in Uttarakhand.
1: They come looking for a brighter future, but before they fulfill their dreams, they face one immediate crucial question: where do I live? The answer lies in two letters, PG, Tangest Accommodations.
8: Coming from Bihar, Jalandhar is quite a contrast in terms of traditions and everything that we have till now experienced.
1: Tangest Accommodations have mushroomed across Jalandhar, turning residential areas into vibrant student communities. Model town, urban estate or the streets surrounding universities and colleges, you will see PG available.
9: In Jalandhar, PG is starting from AC rooms from 10K plus with the luxury rooms, luxury premium rooms.
1: One PG owner, Gautam Malhotra.
9: Mainly we are providing facilities like we are

आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात के 11:10 बजे लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आपने यसुदास को फिल्म चितचोर में सुना। आइए सुनते हैं कैफी आजमी का लिखा फिल्म अर्थ का ये गीत। गायक कलाकार और संगीतकार है जगजीत सिंह।

मैं जगजीत सिंह को फिल्म अर्थ में सुना। आइए सुनते हैं SH बिहारी का लिखा गीत शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म शतरंज से। इस गीत को वसी आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने

आपने मुकेश और लता मंगेशकर को फिल्म पूर्णिमा में सुना। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों का गाया फिल्म मशाल का ये गीत। शब्द लेखन जावेद अख्तर का, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म तोहफा का ये गीत। शब्द लेखन साहिल उद्यान, विकास संगीत।

अपना फिल्म तोहफा का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं किशोर कुमार का फिल्म घर का ये गीत, शब्द लेखन गुलजार का संगीत, आर डी बर्मन का।

आपने किशोर कुमार को फिल्म घर में सुना। आइए सुनते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म वक्त का ये गीत। साहिल उद्यानवी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है रवि ने।

आपने आशा भोसले और महेंद्र कपूर को फिल्म वक्त में सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म दाग का ये गीत। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अपने अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर को फिल्म प्रेम गीत में सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में लता मंगेशकर का गाया फिल्म सिलसिला का ये गीत। शब्द लेखन जावेद अख्तर का, संगीत शिवहरी का।

लता मंगेशकर के गाय फिल्म सिलसिला के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही खत्म होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी मासवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हुर्मुज जल डमरु मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को

0: आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय हिंद।